हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 और 54 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ अब आरंभ होती है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, आपसे कुछ ही पलों के बाद सुनिएगा हिंदी समाचार, अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसके तुरंत बाद 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही

0: उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मैक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: वंदन वार।

साथियों सुनिए आज का चिंतन। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। ये था आज का चिंतन। और अब सुनिए वंदन वार में भक्ति रचनाएं।

0: इसी देशगान के साथ ये कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न हुआ।
1: ये है विविध भारती।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। इसका भाग 236 प्रसारित किया जाएगा। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका का भाग एक। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह है, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। सुबह 7 आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम त्रिवेणी आप सुनते हैं सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2:00। आज त्रिवेणी में आलेख एवं स्वर है ममता सिंह का। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और शाम को 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। आलेख एवं स्वर अशोक सोनावले का है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे। गीतकार शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का भाग दो आज प्रसारित होगा। संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबीर खान। रंग तरंग कार्यक्रम सुबह 11:00 12:05 पर यादों की महफिल और 1:00 सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नग में ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर बाद 2:30 पर। 3:00 सुनिएगा सखी सहेली के अंतर्गत कुछ इन विषयों पर बातचीत। पारिवारिक चिकित्सक, साड़ियों का संसार, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे टसर या घीचा सिल्क साड़ी, झारखंड की मशहूर। शब्द हमारे विचार आपके में सुनिएगा प्रतियोगिता के बारे में और व्यंजन पकौड़े के बारे में बातचीत होगी। संवादक मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में आप सुनेंगे वरिष्ठ साहित्यकार हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग एक। छाया गीत शाम 5:00 5:30 पर, तराने नए पुराने। 6:30 पर आप फिर से सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला आप सुनते हैं शाम 7:00 7:45 पर आज इंद्रधनुष में राग अनुराग।

8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका के अंतर्गत झलकी दिवा स्वप्न। मनुभाई देसाई का लेखन है, निर्देशक सत्येंद्र शरत। कार्यक्रम आपके लिए रात 9 बजे, 10 बजे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी रूपरेखा हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का अंक 236, आप सुनेंगे।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत

अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत समाचार। 7 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। ये समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

7:05 से आप सुनेंगे आकाशवाणी हिसार के प्रसारण कार्यक्रम लोकरंग। सुनिएगा 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात।

सवेरे 8 बजे समाचार प्रभात सुनिएगा और 8:15 पर अंग्रेजी समाचार आप सुनेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। 9 बजे समय रहेगा भारत की गूंज कार्यक्रम का। अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा।

10 बजे समय रहेगा हमारे संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार का। ग्यारह बजे समय रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का 1318वां भाग।

11:30 से सुनिएगा रंग तरंग कार्यक्रम, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 12 बजे समय रहेगा यादों की महफिल कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण भी होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से। दिन में 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार सुनिएगा, अनुप्रसारण आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से किया जाएगा। दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती की गीतमाला। 2:15 पर समय रहेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 2:30 से आप सुनेंगे सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम भी अनुप्रसारित होगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

3 बजे सुनिएगा सखी सहेली कार्यक्रम, अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से होगा। शाम 4 बजे आप सुनेंगे आज की मेहमान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण भी किया जाएगा विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

शाम 6 बजे हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित। छह बजकर 5 मिनट पर कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत जानेंगे आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6 बजकर 10 मिनट पर प्रादेशिक समाचार सुनिएगा। प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: 6:20 से आप सुनेंगे ईश वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत। 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम युवा उमंग का। शाम 7 बजे सुनिएगा खेती किसाना सेती कार्यक्रम। 7:30 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ऑर्गन इंडिया। 7:45 से सुनिएगा कार्यक्रम मारे गांव। 8:00 फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:30 पर सुनिएगा हरियाणा के गलियारे से कार्यक्रम। 8:45 से सुनिएगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार। अनुप्रसारण विविध भारती के मुंबई केंद्र से किया जाएगा। 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम आपके लिए चित्रलोक। 10:00 आप सुनेंगे व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने कार्यक्रम। 11:00 सुनिएगा राष्ट्रीय हिंदी समाचार। अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: 'रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
2: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5:00
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
4: अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
3: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
2: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
5: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
3: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
6: Will he be remembered as a great scientist, said Thomas Alva Edison.
2: कोई कला में उत्कृष्ट है?
3: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
2: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बेहद करीब।
3: कार्यक्रम एक शख्सियत
2: हर सोमवार शाम 5:00
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। बच्चों की एक अलग दुनिया होती है।
7: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
3: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
8: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन प्लीज टेक मी।
0: अभी आपने जाने हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान के साथ टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पेजिश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वीं भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले किए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। पहले कल मंगलवार तक ये छूट दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आपने सुनी हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए गए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड

102.3 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग।

0: नई सुबह, नए सवेरे की शुरुआत। आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। आज के इस कार्यक्रम में आप न सुनवाओगे रागिनी एक किस्से की। आज का किस्सा पद्मावत।
1: ये रे चोकर ते के बाग हरा घन घोर

ਉੱਚੀ ਐਡੀ ਕੇ ਬੂਟ ਪੈਰ ਹੀ ਔਰ ਕੜੀ ਤੋੜੀਏ ਪਹਾੜੀ ਸੰਪਾ ਕਲੀ ਅਵੇਰ ਜਾ।

के तेज हवा में, के तेज हवा में पल्ला उड़ गया वो सरहाना, गाती का झटका लग गया नाथ टूट गई गया पेच लकड़ पति का, और कोटियों के हावण लगी यो हार झुकिया छाती का।

जब आवे सामने का महीना वो गोरी रंगन छाटे किसे की गोरी किसे की छोरी सबके साटे साटे बिछाड़ते नीचे नीचे रखुरिया धरती काटते किसे का सिंधारा किसे की कोठड़ी वो भर

वो पद्मावत की सहेलियां पद्मावत को खूब समझाती हैं। सखियों के कहने पे पद्मावत झूलने के लिए तैयार हो जाए, रणबीर सेन उड़ेबागा में छुपा बैठा था और वो उस नजारे को छुप के देख रहा था। वो सहेलियां पद्मावत को झुलाती रही, जोटा फिर गया। पद्मावत कहने लगी, आए तमने झुलाना भी नहीं आता, बीरा की पिंग गीता से सजा करे, कोई गीत ना मल्लार ताम के गूंगी हो। इतनी बात सुन के पद्मावत की सहेलियां कहने लगी, बेबे गीता बिना तो लूखा खान नहीं देंगी, और वो परदेशी बुलाना मारे बस का कोन्या। उस मौके पे पद्मावत की सहेलियां मल्हार गाती हैं। कवि ने पद्मावत की भावना को किस प्रकार व्यक्त किया है, उस मौके की बात।

0: पद्मावत बागा में अपनी सहेलियों के साथ झूलती रही और मन मन में रणबीर सेन की सूरत को याद करती रही। काली घटाएं छाई हुई हैं, चारों तरफ बादल उमड़ रहे हैं। जब पद्मावत बार बार अपनी सहेलियां के शामी उस छेले रणबीर सेन की बात चलावे है तो पद्मावत की सहेलियां उसकी बात को समझ जाए और क्या कहती हैं उस मौके की बात इस रागनी में।
1: ये तू मरती कद्यो मरता

मेरे दोरे काट नहीं, जो सोच समझ के बात करे वो कदे बारा बात नहीं। देखिए

रोवे से तू ये भेस कवारे ने बाबुल की घड़ी ये उम्र बता दी पड़ी रही सब।

लड़किया एके ना लगी सोट तेरे भी इतना दुख हो से दू तेरा गण घोट ये पीठ फेर के करे ये सारे ये करे घूंघट की ओट बिन समझे।

बात उस मौके की जब रणबीर सेन राजकुमारी पद्मावत की शान शक्ल को देख के चकरा जा है। एक बार रणबीर सेन राजकुमारी पद्मावत को मिलने के लिए उसके महलों में पहुंच जा है और सोई पद्मावत को देखते हैं। जब उस पद्मावत की आंख खुली और उसने अपने महलों में रणबीर सेन को देखा तो वह बहुत खुश हो जाए। उस मौके पे पद्मावत और रणबीर सेन के बीच क्या सवाल जवाब होते हैं, उस मौके की बात इस रागनी में।

0: इस प्रकार से रणबीर सेन पद्मावत के महलों में पहुंच जाए और पद्मावत को अपने मन की बात बतावे। आपस की का सुनी और बातचीत के बीच दोनों अटूट प्रेम बंधन में बन जाए।
1: ये सुना भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के ते हरियाणवी गीत संगीत, इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।

0: नया बेहतर है,
1: क्योंकि तुम ही हो,
2: किंतु पुराना बेहतरीन।
3: दिल चीज क्या है?
0: नया श्रेष्ठ है,
1: केसरिया तेरा,
2: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
0: नया उत्कृष्ट है,
1: तेरी गलियां,
2: किंतु पुराना अनमोल।
3: चुरा लिया है तुमने जो दिल को।
0: नया अनूठा है,
2: किंतु पुराना अनुपम।
0: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
2: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में,
0: हर बुधवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
0: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
2: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
4: पापर के नजर नूजी कर दे।
0: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
1: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
2: या आप प्यार में हैं?
5: पहला पहला प्यार है।
0: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
6: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
2: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
0: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
2: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम लोक रंग FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र।
1: ताजा खबरें,
2: आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं।
3: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
4: मैं अलबेली घूमू अकेली।
1: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
5: अभी न जाओ छोड़ कर।
3: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
1: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
3: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
1: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

श्रोताओं, सुबह केवल एक समय नहीं है बल्कि एक नया विश्वास है। ये हमें सिखाती है कि हर दिन अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठता है, वो जीवन की कठिनाइयों को भी अवसर में बदलना सीख जाता है। आज किसी से मिलने पर मुस्कुराकर नमस्कार कीजिएगा। हो सकता है आपकी वो मुस्कान किसी के पूरे दिन को रोशन कर दे, और मन में अगर कोई चिंता हो तो उसे कुछ देर के लिए प्रकृति के हवाले कर दीजिए। उगते सूर्य को देखिए, पक्षियों के कलरव को सुनिए और गहरी सांस लेकर महसूस कीजिए कि जीवन कितना सुंदर है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम लोक रंग एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। सुबह के 7:40 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम सुप्रभात का। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। आकाशवाणी के प्रिय श्रोताओं, नई सुबह की सुनहरी सी बेल हमें आपका हार्दिक स्वागत करती है।

आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। हर सुबह अपने साथ एक नई आशा, नए संकल्प और नई संभावनाएं लेकर आती है। आइए इस दिन की खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं सकारात्मक सोच, मधुर मुस्कान और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ। कामना है कि आज का दिन आपके जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य को सफलता के साथ लेकर आए। चलिए जानकारी ले लेते हैं आज के पंचांग की। तो आज है 1 जुलाई 2026, दिन बुधवार, शक संवत 1948 और विक्रम संवत 2083। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के मौसम की। आज सुबह वातावरण अपेक्षाकृत सुहावना रहने की संभावना है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, गर्मी और उमस बढ़ सकती है। दोपहर के समय तेज धूप रहने के आसार हैं, जबकि शाम तक बादल छाने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना बन सकती है। घर से बाहर निकलते समय पानी अपने साथ रखिएगा, हल्के सूती वस्त्र पहने और तेज धूप से बचाव का ध्यान रखिएगा। यदि बारिश हो तो वाहन सावधानी से चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति सकारात्मक सोच है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, यदि मन में विश्वास और कर्म में ईमानदारी हो तो हर कठिन राह भी आसान बन जाती है। हर सुबह हमें याद दिलाती है कि बीता हुआ कल कभी भी बदल नहीं सकता, लेकिन आज का दिन तो हमारे हाथ में है, इसलिए हर नए दिन की शुरुआत मुस्कान और आशा के अच्छे कर्मों के साथ कीजिए।

अब समय है रामचरितमानस की कुछ श्लोक का। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृहे मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वो न तो घर गया और

ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उर मारी रंक जिमी राजा विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा यह प्रतापर भी तेही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा उसी के पास गया, उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राव त्रिशति नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहेऊ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया।

श्रोताओं, हरियाणा की लोक संस्कृति में कहावतों का विशेष स्थान है। ये कहावतें सिर्फ भाषा की सुंदरता नहीं बढ़ाती बल्कि जीवन को सरल और सार्थक बनाने का मार्ग भी दिखाती हैं। और आज की कहावत हमें मेहनत, ईमानदारी और कर्म के महत्व को समझाती है। आज की हरियाणवी कहावत है, मेहनत की रोटी घी तै भी मोटी। इस कहावत का शाब्दिक अर्थ है, मेहनत से कमाई गई साधारण रोटी भी घी से चुपड़ी रोटी से अधिक स्वादिष्ट और संतोष देने वाली होती है। इस कहावत के पीछे एक बहुत गहरी सीख छिपी है दोस्तों। जीवन में धन, सम्मान और सफलता तभी सच्चा सुख देते हैं जब वो ईमानदारी और परिश्रम से प्राप्त किए हुए हों। बिना मेहनत के मिली वस्तु कुछ समय के लिए खुशी जरूर दे सकती है, लेकिन मन को संतोष नहीं दे पाती। किसान को ही देख लीजिए, वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंचता है और तपती धूप, कड़ाके की सर्दी, बरसात, सब चीजों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। उसी की मेहनत का परिणाम होता है कि हमारे घरों तक अन्न पहुंचता है। इसी के साथ आज का सुप्रभात कार्यक्रम समेटने की आपकी अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंडोरिया चाहती है इजाजत। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। सुबह के 8 बजे हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य

0: राज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन

0: संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब डॉलर से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
3: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
4: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
3: सभी मदरसों को UDIS, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
5: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जाँच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मृति एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय यूपी TET

0: टीईटी की समीक्षा बैठक में लिया गया। टीईटी परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मेक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थिति और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली NCR को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिशकियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं।

ईश्वर के बाद जीवनदायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में जब कोई डॉक्टर मुस्कुरा कर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप लगातार सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

श्रोताओं गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम चित्रलोक में आप सभी विविध भारती सुनने वालों का दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म फिजा से। गुलजार के बोल हैं, अनु मलिक का संगीत, उदित नारायण, अलका याग्निक और प्रशांत की आवाजें।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आज है 1 जुलाई

0: 2026 से 7 जुलाई 2026 तक हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। हर साल लाखों भारतीय एक साझा उद्देश्य के साथ एकजुट होते हैं और पेड़ लगाना, हरित भविष्य में योगदान देना, ये कार्य मिलकर करते हैं। वन महोत्सव के नाम से जाना जाने वाला यह राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसे वन उत्सव या वृक्षों का त्योहार भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण उत्सवों में से एक बन गया है। यह सिर्फ वृक्षारोपण अभियान से कहीं अधिक है, बल्कि यह जीव विविधता को बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जल संरक्षण और आजीविका को सहारा देने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाता है, हम सबको जागरूक करता है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला वन महोत्सव नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी निकायों, गैर सरकारी संगठनों और निगमों को वृक्षारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक साथ लाता है, जोड़ता है। वन महोत्सव एक अखिल भारतीय वृक्षारोपण उत्सव है जो हर साल जुलाई में मनाया जाता है। इस पहल को 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई थी। तभी से वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। यह समय भारत के कई हिस्सों में मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है। बारिश, नए लगाए गए पौधों को जड़ जमाने और सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां जो प्रदान करती है। भारत की तेजी से बढ़ती शहरी आबादी, विस्तारित बुनियादी ढांचा और बदलते जलवायु पैटर्न के कारण पर्यावरण बहाली की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। हरियाली समग्र रूप से पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। दोस्तों, क्योंकि वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए वनस्पति का संरक्षण करना और स्वस्थ प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए प्रयास करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। आइए मिलकर हम ये वन उत्सव मनाते हैं।
1: लग लग लग लग लग लग लग लग लग

ए.आर. रहमान के संगीत से सजा आनंद बख्शी के बोलों से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म का नाम ताल। और अब वक्त है कार्यक्रम चित्रलोक में एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, आज सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार केंद्रित रहेगा संगीतकार सी अर्जुन पर। सुनना नहीं भूलिएगा। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश, एक रिश्ता द बॉन्ड फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के ही स्वरों में ये गीत समीर के बोल हैं।

0: संस्कृत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अरबीला फिल्म का गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। आपको बता दें कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। यह दिन देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में हुआ था। बिधान चंद्र रॉय की गिनती देश के महान चिकित्सकों में की जाती है। इतना ही नहीं बल्कि विश्वभर में चिकित्सा के क्षेत्र में उनका अहम योगदान रहा है। इसलिए हम भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के हर डॉक्टर को आज सलामी देते हैं और इस विशेष दिन यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे की उन सभी को सम्मान के साथ बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत दिल का रिश्ता। इस फिल्म से अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों के स्वरों में समीर के बोल, नदीम श्रवण की बनाई धुन।

हो चाहे ये कि रात और दिन तुझे प्यार करेंगे हम, डरते हो क्यों हो जाने मन,

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं परदेसी बाबू। इस फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा ने इस गीत की रचना की है और तर्ज बनाई है आनंद राज आनंद में।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी तरसती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां।

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनारू।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अब आपको सुनवाते हैं समीर का लिखा ये गीत, अलका याग्निक अभिजीत की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम है जुदाई।

बॉम्बे फिल्म से गीत चित्रा की आवाज में महबूब के बोल ए आर रहमान की बनाई धुन।

अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश, अलका याग्निक का गाया गीत, समीर की रचना, हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम जूली।

जूली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक से अब दीजिए आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया को आज्ञा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सुनते रहिए आगे के कार्यक्रम विविध भारती के संग।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी मां।

अर्जुन का जन्म 1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

फिल्म पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। श्रोताओं, सुबह के 10 बजे हैं और अब समय है आप सभी के प्यारे दुलारे कार्यक्रम नमस्ते हिसार का। अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो की एंट्री पर तालियां बजती हैं, लेकिन असली जिंदगी के हीरो वो हैं जो बिना किसी कैमरे, बिना किसी तालियों और बिना किसी शोहरत के हर दिन लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे रहते हैं, और आज का दिन उन्हीं अनमोल योद्धाओं को समर्पित है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हमसफर प्रीति ढिंडोरिया, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते हिसार, जहां हर सुबह सिर्फ समय नहीं बताती बल्कि रिश्तों का, संस्कारों का और अपनेपन की खुशबू को भी बिखेरती है। दोस्तों, आज 1 जुलाई का दिन कई मायनों में बेहद खास है। आज है राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। कहा जाता है भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनाए। जब हम बीमार होते हैं, घबराए होते हैं या किसी अपने की सलामती की दुआ कर रहे होते हैं, तब एक डॉक्टर सिर्फ दवा ही नहीं देता बल्कि उम्मीद भी देता है। आज के दिन हम सभी चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को दिल से नमन करते हैं। और आज से वन महोत्सव की भी शुरुआत होती है दोस्तों। फिल्म उपकार का गीत तो याद होगा ही आपको, मेरे देश की

धरती सोना उगले, लेकिन ये धरती तभी सोना उगलेगी जब हम इसकी आंचल को हरियाली से भरेंगे। एक पेड़ लगाना केवल पर्यावरण की सेवा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे सुंदर उपहार है। आइए इस वन महोत्सव पर संकल्प लें कि एक व्यक्ति, एक पौधा और उसकी पूरी जिम्मेदारी। बात करते हैं हिसार के मौसम की। तो हिसार में आज गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। दिन में तेज धूप रहने की संभावना है, जबकि शाम के समय बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। बाहर निकलते समय पानी अपने साथ जरूर रखें और तेज धूप से बचाव भी जरूर करें।

शहर में विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन की गतिविधियां जारी हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाएं वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण अभियान चला रही है। शहर के कई अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

हिसार में नई कमिश्नर ने निगम ऑफिस का निरीक्षण किया। 17 शाखाओं का कामकाज जांचा, अधिकारियों कर्मियों से कार्य प्रणाली की जानकारी ली। हिसार नगर निगम की नवनियुक्त निगमायुक्त सी जया श्रद्धा ने पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में काम शुरू कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने पहली बार नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक एक करके करीब 17 शाखाओं की कामकाज को देखा और अधिकारियों कर्मचारियों से उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी ली।

हरियाणा में अगले 48 घंटों में मानसून की एंट्री, यमुनानगर अंबाला में बारिश, 14 जिलों में अलर्ट, 11 शहरों में तापमान 40 डिग्री पार। हरियाणा में मानसून अगले 48 घंटों में एंट्री करेगा। मंगलवार दोपहर मानसून देहरादून और हिमाचल से मंडी तक पहुंच गया है। आज मानसून से पहले अंबाला और यमुनानगर में बारिश हुई, पंचकुला में भी दोपहर बाद बादल छाए रहे। बंगाल की खाड़ी से आ रही मानसूनी हवाएं सबसे पहले यमुनानगर अंबाला और पंचकुला के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करेंगे। इसके बाद करनाल कुरुक्षेत्र और पानीपत होते हुए दिल्ली NCR और दक्षिण हरियाणा को कवर करेंगी। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटों के भीतर हरियाणा के अधिकतर इलाकों में मानसूनी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। वहीं सोमवार को प्रदेश के 11 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ,
1: बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
7: जी,
6: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
7: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
6: पर ये होगा कैसे?
7: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
6: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
7: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
6: बस
7: बस
6: समझ गया।
7: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: श्रोताओं, अब बारी है आप सभी के पसंदीदा सेगमेंट की, यानी कि प्रश्नों की। और प्रश्नों का जवाब आप देंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। प्रश्न जानने से पहले जान लीजिए किस तरह से आपको प्रश्नों के जवाब हमें भेजने हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। जी हाँ, 9729253272। इस नंबर पर आपको अपने नाम, अपने शहर के नाम, अपने पसंद के गीत के साथ सवाल का जवाब हमें लिख भेजना है। हम इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले अब जान लीजिए क्या है आज का पहला सवाल। इनमें से कौन प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? प्राणी जगत का इनमें से कौन सा सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं एनेलिडा, ऑप्शन बी कॉर्डेटा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी प्लेटी हेल्मिथिन्स। इस प्रश्न का जवाब हमें जल्दी से लिख भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर।

हमारा पहला प्रश्न था, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ इनमें से क्या है जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शंस थे ऑप्शन ए एनेलिडा, ऑप्शन बी कॉर्डेटा, ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा और ऑप्शन डी प्लेटी हेलमिंथिस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, और हमारे बहुत सारे श्रोता साथियों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन सबसे पहले जवाब दिया है सुंदर नगर हिसार से है मोनिका खरलवा, पंकज शिवम, नैन्सी सुलेख और सुरेश खरलवा। हमारे दूसरे जो श्रोता है जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया है वो है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी आवाना, अवनी प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी केरत आवाना। ये श्रोता है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक व वेदांश। गांव सुई तहसील भवानी खेड़ा जिला भिवानी से बलजीत मनकस, मूर्ति देवी, संतोष, प्रदीप, दीप्ति, वीरेन मनकस। उमेश सांगवान गांव पेंतावास कला तहसील जिला चरखी दादरी से हमारे ये श्रोता है। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, सुरेंद्र भ्यान और मनोज भ्यान। गोंदर करनाल से हमारे ये श्रोता है किरण पाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी, भगत सिंह बुम्बक।

गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा, कान्हा, लड्डू, ममता और समस्त दहिया परिवार, ये हमारे श्रोता है। मंटू शर्मा, गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से। इन सभी श्रोताओं ने आज के पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है और आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारा आज का दूसरा जो प्रश्न है वो है, कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो मनुष्य द्वारा किया जाता है और पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वन महोत्सव, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी लकड़ी काटना या ऑप्शन डी सामाजिक वानिकी। इस प्रश्न का जवाब हमें जल्दी से लिख भेजिए। प्रश्न के जवाब, नाम, आपके शहर या गांव का नाम और साथ में अपनी पसंद के गीत को लिखना न भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9722532272। तो चलिए आज के पहले प्रश्न के विजेता की पसंद का गीत सुनवाते हैं, तब तक इंतजार करते हैं दूसरे प्रश्न के जवाब का।

श्रोताओं, हमारा आज का जो दूसरा प्रश्न था वो था, इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो मनुष्य द्वारा किया जाता है और पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है। हमारे ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए वन महोत्सव, ऑप्शन बी वन रोपण, ऑप्शन सी लकड़ी काटना, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक वानिकी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लकड़ी काटना। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत जल्दी इस प्रश्न का जो जवाब है हमें लिख भेजा है, लेकिन हम सबसे पहले जिन्होंने इस प्रश्न का जवाब लिखकर भेजा है उनका नाम आपको बताते हैं, और वो सुनना चाहते हैं अनजाना फिल्म का गीत। और ये हमारे श्रोता है गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से, रामधारी आवाना, अवनी प्रियांशी, रियांशी और जो सनाया, गुरदीप और बेबी कीरत।

वाना। ये हमारे श्रोता सुंदरनगर हिसार से हैं, मोनिका खरलवा, पंकज शिवम, नेंसी सुलेख, सुरेश खरलवा, तस्वीर सिंह चौहान, ये हैं हिसार के हमारे श्रोता। और गांव नलोई, तहसील सिवानी, मंडी, जिला हिसार से हमारे नियमित श्रोता हैं ये सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश। गांव सुई, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी से बलजीत मनकस, मूर्ति देवी, संतोष, प्रदीप, दीप्ति, वीरेन मनकस। ये हमारे श्रोता हैं जीजेयू हिसार से, भारत भूषण, कृष्ण फौजी, मोनिका लांबा, भारत भूषण, इन्होंने शायद गलती से दोबारा अपना नाम लिखा है, और इनके साथ है संदीप जूरिया और मुकेश। उमेश सांगवान, गांव पैंतावास, कला, तहसील जिला चरखी दादरी से। गांव जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भ्यान, शमशेर, सुरेंद्र भ्यान, मनोज भ्यान। गांव गोंदर करनाल से किरणपाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। ये हमारे श्रोता है मंटू शर्मा, गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से। हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी बधाई सही जवाब देने के लिए। तो चलिए पहले सही जवाब देने के लिए रामधारी आवाना जी की पसंद का गीत हम सुनते हैं आप सभी के साथ।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will you be remembered as a great scientist, say, La Thomas Alva Edison?
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि?
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताज़ा खबरें
2: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
5: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
6: अभी न जाऊं छोड़ कर।
2: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
2: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
7: श्रोताओं, जहां दवा काम न करे वहां दुआ काम आती है, और जहां दुआ के साथ एक समर्पित डॉक्टर का साथ मिल जाए वहां उम्मीद फिर से मुस्कुराने लगती है। आज 1 जुलाई का दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, और ये दिन उन सभी डॉक्टर्स को समर्पित है जो दिन रात बिना थके हमारी और हमारे परिवार की सेहत की रक्षा में जुटे रहते हैं। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे हर वर्ष 1 जुलाई को महान चिकित्सक, शिक्षाविद, समाजसेवी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। एक अद्भुत संयोग ये भी है कि उनका जन्म और निधन दोनों ही 1 जुलाई को हुए। चिकित्सा और जनसेवा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में ये दिन उन्हें समर्पित किया गया है। इस वर्ष डॉक्टर्स डे की थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, यानी मास्क के पीछे उन लोगों का ख्याल कौन रखता है जो दूसरों का इलाज करते हैं। ये विषय हमें याद दिलाता है कि डॉक्टर भी इंसान हैं, वे भी शारीरिक और मानसिक थकान महसूस करते हैं, उनके भी परिवार हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, इसलिए उन्हें हमेशा सम्मान, सहयोग और संवेदनशील व्यवहार की आवश्यकता रहती है। दोस्तों, एक डॉक्टर सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं करता बल्कि मरीज के मन में आशा का दीप भी जलाता है, और एक सही सलाह, एक भरोसे भरी मुस्कान और समय पर दिया गया उपहार किसी भी दवा से कम नहीं होता। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर को शायद ही कोई भूल पाया होगा। जब पूरा देश अपने घरों में सुरक्षित था, तब डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मी अपनी

जान की परवाह किए बिना अस्पतालों में डटे रहे। उन्होंने हजारों लाखों लोगों को नया जीवन दिया। उनके इस समर्पण को शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं है। आइए इस अवसर पर हम भी कुछ छोटे छोटे संकल्प लेते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी दवाई ना ले, इलाज के दौरान धैर्य और सम्मान बनाए रखें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें और संतुलित भोजन, योग, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने डॉक्टर का सम्मान करें, क्योंकि स्वास्थ्य समाज के निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है। सभी डॉक्टर्स, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। याद रखिए, डॉक्टर सिर्फ एक पेशा नहीं है, बल्कि सेवा है, समर्पण है और मानवता का दूसरा नाम है।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हर सुबह एक मौका है
2: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
1: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
2: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
1: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
2: आकाशवाणी हिसार के साथ।
3: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
1: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
2: रोज सुबह 7:40 पर
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: डॉक्टर बिधान चंद्रा रॉय भारत के महान चिकित्सक, शिक्षाविद, समाज सेवी, राजनेताओं में से एक थे और उन्हीं की स्मृति में भारत वर्ष में हर वर्ष 1 जुलाई का दिन राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी ले ली जाए। इनका जन्म हुआ 1 जुलाई 1882 को पटना में और निधन भी 1 जुलाई को हुई हुआ 1962 में कोलकाता में। पेशे से चिकित्सक थे, शिक्षाविद, समाज सेवी और राजनेता थे। मुख्यमंत्री रहे 1948 से 1962 के बीच पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री। डॉक्टर रॉय ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे उच्च अध्ययन के लिए लंदन चले गए जहां उन्होंने कठिन परिश्रम से कम समय में चिकित्सा की प्रतिष्ठित डिग्रियां हासिल की। चिकित्सा सेवा को जनसेवा का माध्यम इन्होंने बनाया। गरीब और जरूरतमंद मरीजों का निस्वार्थ उपचार किया। पश्चिम बंगाल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और कई अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और विकास में भी इनका बहुत योगदान रहा। आधुनिक कोलकाता के विकास में उनका विशेष योगदान माना जाता है और वर्ष 1961 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उनका जन्म और निधन दोनों ही 1 जुलाई को हुए। वे अपने मरीजों के प्रति संवेदनशीलता, ईमानदारी और सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सम्मान में ही भारत सरकार ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के रूप में मनाने की परंपरा शुरू की। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि एक डॉक्टर केवल रोगों का उपचार नहीं करता बल्कि समाज में विश्वास, आशा और मानवता का भी संचार करता है। उनके आदर्श आज भी हर चिकित्सक के लिए प्रेरणा है।

होते बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, धरती को हरा भरा रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य तैयार करते हैं। वन महोत्सव हमें यही संदेश देता है कि प्रकृति का संरक्षण केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है। अगर हम सभी मिलकर

छोटा सा संकल्प आज हम और आप मिलकर लेते हैं कि एक पेड़ जरूर लगाएंगे, एक जीवन जरूर बचाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे और खुशहाली लाएंगे। और दोस्तों, पेड़ तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम धन जायदाद अगर अपने बच्चों को ना भी दे तो चलेगा, लेकिन अगर सांसें ही ना दे पाए तो कैसे चलेगा। बिल्कुल, अब इसी सकारात्मक सोच और प्रकृति के प्रेम को दिखाइए, पौधा जरूर लगाइए, क्योंकि जब जब मानसून का मौसम आता है तो ये हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, पलने के लिए बहुत सहायता भी देता है। श्रोताओं, अब आप भी ऐसे ही आकाशवाणी हिसार को सुनते रहिए और हमारे साथ गुनगुनाते रहिए और पौधा जरूर लगाते रहिए। इसी सकारात्मक सोच और प्रकृति के प्रति प्रेम के साथ अब आपकी अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया चाहती है आज की नमस्ते हिसार कार्यक्रम से अनुमति। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेड़ों से दोस्ती निभाइए और अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आपका एक कदम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी जीत और खुशहाली लेकर आ सकता है।

इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार यहीं संपन्न हुआ। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। दिन के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम का 1378वां भाग।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
1: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं।

0: ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ, श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए। हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है
1: जी।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं
1: जी।
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीटेराइट बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुँचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए। इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगी और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोद कर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था
0: जी। लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है
1: जी।
0: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी
0: जी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है ऑडियो

0: sciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती है।
2: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
4: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
5: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
2: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
4: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
6: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
2: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
4: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः

0: हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
1: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
0: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: जी मैम।
1: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
1: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारे श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
1: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती है, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे वाह, ये भी कोई
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूँ? अच्छा अच्छा।

0: देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
1: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो
1: अच्छा। और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ यहाँ से।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
1: मुखिया जी, मुखिया जी!
4: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि...
4: ओ, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
4: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
4: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहे तो भी नहीं जा सकते।
4: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
4: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
4: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
4: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
4: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम तीसरी मंजिल पर जा रहे हैं।
2: मुखिया जी, मुखिया जी,
4: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
2: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
4: चढ़ रहा है। अरे तो तीसरी मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
2: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं। आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं।
4: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
2: जैसी आपकी मर्जी।
4: अरे ये तो सचमुच चला गया। कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है? दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान, इतना मजबूत मकान भी गिर रहा।
7: हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कहाँ जाऊँ मैं? मैं ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है, कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ मैं! नहीं, ये क्या?
4: ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है।

मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन लेकिन ये पानी तो मुझे मुझे दूसरी तरफ बाहर देखा रहा है। आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद शायद मेरी मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 102.3 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से। दिन के 11:30 होने को है। अब से चंद पलों के इंतजार के बाद सुनिएगा विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आप सुन रहे थे एन हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में यह गजल, रफीक हुसैन और रफीक जयपुरी की लिखी यह गजल थी, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तर्ज थी। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कहीं बे ख्याल हो
2: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार न

0: विजय शाह का सर्वाधिक ये गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर की रचना थी, आवाजें थी पंकज उधास और साधना सरगम की। मोरा फिल्म का गीत आपने सुना।
1: विविध भारती पर आ रही हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बहारें खिली तनी।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलीशा चिनाई को आपने सुना एल्बम थी मेड इन इंडिया। अलीशा चिनाई बिद्दू और श्याम अनुरागी का लिखा ये गीता बिद्दू की तर्ज थी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जी रामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर

0: सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल धीरज सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। तो हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।

हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।

हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, गूंजती है काफिर आगे किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहां।

0: मोहब्बत में करते चले ये वफा खूब है।
1: हाय नादा तेरी ये अदा खूब है।
0: मैं तू गलियों की परछाई कभी यहाँ कभी वहाँ शाम से

0: की तर्ज थी मजनू सुल्तानपुरी की रचना, आपने सुनी मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म थी तीसरी मंजिल।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा।

तुम मुझको हर मोड़ पे मिल ही जाती हो तुम

मेरा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम।

कटी पतंग फिल्म का ये गीत था जो गलत फहमियों पर आधारित ये फिल्म थी श्रोताओं, और अभी तक जो गीत हमने लिए हैं वो ऐसी ही फिल्मों से हमने लिए हैं। तो ये जो फिल्मों के गीत आप सुन रहे हैं इनमें कौन सी फिल्म आपको ज्यादा पसंद है ये आप चाहें तो बता सकते हैं। और गोलमाल फिल्म के कैरेक्टर जो है उनके बारे में हमने आपसे पूछा था, अमोल पालेकर के बारे में, और एक फिल्म संजीव कुमार की थी जिसमें देवेंद्र वर्मा और ये शेक्सपियर के उपन्यास पर थी। तो आप इसके बारे में भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी और भ्रम दोनों ही मानसिक और व्यवहारिक दृष्टिकोणों से भ्रामक स्थितियां हैं, लेकिन दोनों के मूल कारणों और प्रभावों में गहरा अंतर है। जहां गलतफहमी दो लोगों के बीच विचारों के आदान प्रदान में कमी का परिणाम है, वहीं भ्रम व्यक्ति की स्वयं की समझने की क्षमता में त्रुटि या मानसिक विकार है। एक और श्रोता ने लिखा है, फिल्म ज्वेलथीप देवानंद अशोक कुमार वैजयंतीमाला पूरी फिल्म में लगता है कि देवानंद ही है जो असल जो चोर है, लेकिन वैजयंतीमाला का पहचान की इन्होंने मतलब फिल्म की जो बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि अक्सर हम जागते हुए भी सपनों को देखते हैं और कल्पना लोक में पहुंचकर बहुत कुछ देखते हैं, पर असलियत में वहां कुछ भी नहीं होता। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि यहां भी हमें गलतफहमी होती है, जी हां कई बार। और एक और श्रोता ने लिखा है कि साधना जो दो रोल में है मेरा साया फिल्म में, एक सुनील दत्त की पत्नी और दूसरी डाकू के गिरोह की सदस्य थी। एक सवाल आपसे पूछते हैं श्रोताओं कि दो जो गायिकाएं हैं उनके नाम आप पहचानिए और सोचिए कि जब आप उनके गीत सुनते हैं तो क्या आपको कोई गलतफहमी होती है कि ये गीत किसने गाया है, इन्होंने गाया या इन्होंने गाया।

दो सहेलियां हैं वो बातें कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके महबूब की क्या पहचान है, क्योंकि गलत फहमी ना हो जाए इस वजह से। एक और श्रोता ने लिखा है कि झुमका गिरारी ये गीत बहुत अच्छा लगता है मेरा साया फिल्म का। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा साया फिल्म के तो सभी गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन नैनों में बदरा छाए गीत सुनो तो अनुभूति का स्तर जो होता है वो अलग होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि इसी सवाल के लिए जो हमने आपसे पूछा था कि मृग तृष्णा के बारे में उन्होंने लिखा है कि जो रेत में अक्सर या रेत के समंदर की तरह नजर आती है, ऐसा लगता है कि दूर पानी है लेकिन पानी वहां होता नहीं। और जो सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, दो गायिकाएं हैं, क्या उनके गीत में आपको कुछ गलत फहमियां आवाज में होती हैं? तो अगर आप पहचान रहे हैं इन्हें तो आप जरूर लिखें। और सफर के दरमियान भी हमने आपसे पूछा था कि बहुत सारी गलत फहमियां होती हैं, तो इस बारे में भी आप लिख सकते हैं।

की कसम फिल्म का ये गीत था मुमताज पर फिल्माया गया। लता मंगेशकर की आवाज थी और श्रोता और दो जो कलाकार हैं गायक कलाकार उनके बारे में हमने आपसे पूछा था। ये लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर जी की बात हम कर रहे थे क्योंकि इनके गाए हुए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसमें बड़ी सारी गलत फहमियां हो जाती हैं कि किस गीत को किसने गाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संजीव कुमार मौसमी चटर्जी अभिनीत फिल्म इतनी सी बात का इन्होंने जिक्र किया है, जी हाँ हम लेकिन बात कर रहे हैं फिल्म अंगूर की। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक सामाजिक ज्वलंत विषय पर आधारित फिल्में हैं ये, ऐसी गलत फिल्में अगर आ जाए तो बैठकर सुलझा लें, नहीं तो कितनी जिंदगियां जिंदगी जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे महबूब फिल्म के बारे में कि अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म ये थी, साधना पर फिल्माया गया गीत था और साथ ही अमिता भी नजर आती हैं श्रोताओं, और इस गीत के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्दों से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज और लहजा माने रखता है, यदि कहे गए शब्द और बोलने का तरीका मेल नहीं खाते तो गलत फहमी हो जाती है। कई बार लोग बातचीत के दौरान सिर्फ अपनी बात रखने का इंतजार करते हैं या आधा सुनकर ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आपको फिल्म और कलाकार बताने हैं।

अच्छे अच्छे और फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं। और हमने जो आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, इस फिल्म में सुनील और विनोद के बीच एक बड़ी गलतफहमी होती है। गोलमाल फिल्म में राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद हैं और अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र वर्मा क्रमशः अशोक और बहादुर की भूमिका में।

पालेकर और जरीना बहा पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे चितचोर फिल्म से। आवाजें थी सुदास और हेमलता की। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी सभी कमेंट्स के लिए आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं।

दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं डॉक्टर्स डे पर। आज पहली जुलाई कैलेंडर की वो तारीख जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में अहम भूमिका निभाती है। आज की तारीख उन डॉक्टर्स के नाम है जो हमें बीमार होने पर नया जीवन देते हैं। मरीज के अटूट विश्वास और एक चिकित्सक के निपुण प्रयास के बीच जो अदृश्य सेतु बनता है वही संसार की सबसे सुखद अनुभूति होती है। डॉक्टर्स तमाम दवाइयों के साथ साथ जब अपनी दुआ की पोटली थमाते हैं और कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है, जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, तो आपकी आधी बीमारी उड़न छू हो जाती है। आप सबके मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं जब सफेद कोट में एक चिकित्सक आपसे मुस्कुराकर नसीहत की पोटली थमाते हैं, तब आप और हम यही कहते हैं।

ईश्वर के बाद जीवनदायक हमारा डॉक्टर ही होता है। ये दिन देश के सभी डॉक्टर्स के प्रति आभार जताने का एक खास मौका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 1961 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म और उनकी याद का दिन भी 1 जुलाई है। उन्हीं की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स की अनिद्रा और अथक परिश्रम में ही जाने कितने परिवारों की चैन की नींद और अधरों की खोई हुई मुस्कान महकती है। जब डॉक्टर आपको मुस्कान देते हैं तो बदले में उन्हें भी आप सम्मान

कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह खुद नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने धरती पर फरिश्ता यानी डॉक्टर को भेज दिया। रात के 3 बज रहे हो या सुबह के 4, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई डॉक्टर किसी की जिंदगी बचाने के लिए जाग रहा होता है। किसी ने कहा है, मर्ज का खौफ मिट जाता है पल भर में जब कोई डॉक्टर मुस्कुराकर कह दे कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दवाएं तो सिर्फ साइंटिफिक फॉर्मूला है, असली जादू तो उस डॉक्टर के भरोसे और उनकी डांट में होता है जो अपनों जैसी लगती है। अपनी खुशियां, अपने त्योहार, यहाँ तक कि अपनी नींद भी कुर्बान कर देते हैं डॉक्टर्स। ये हौसला सिर्फ डॉक्टर के पास ही होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाओगे। कहते हैं कि विज्ञान जब करुणा से हाथ मिलाता है तब एक चिकित्सक का जन्म होता है। अस्पताल के शांत गलियारों से लेकर आपातकाल की उन तनावपूर्ण रातों तक डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की हर धड़कन में किसी बेबस परिवार की उम्मीद मुस्कुराती है। तो आज डॉक्टर्स डे पर देश के और दुनिया के सभी डॉक्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। और फीफा वर्ल्ड कप में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में यूपीआई के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि वीवी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय

0: वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
2: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
1: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
2: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
1: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
3: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
1: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी शोध कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
1: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य

0: की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
1: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
2: इंडियाज एंगेजमेंट
3: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है,
2: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने

0: पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया। इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुँचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

देवभारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का।

0: एक रात की स्वयं गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खान का लिखा।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें

0: कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी
0: हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।
4: लचकत चमकत चलत कामिनी, जही गुण दमकत चपल दामिनी, ओ बावरी ओ सावरी, अरे ओ चंचल पल छिन, रुक जा रुक जा रुक जा।

आवाज में इकराज फिल्म से। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको सुनवाया था दुल्हन इकराज की फिल्म का नगमा। उस गीत में संगीत था मदन मोहन जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: दिखाई, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि उनके पता, उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम बताइएगा
0: जी,
1: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी स्थिति भी होती है कई बार
0: जी।
1: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने

0: स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकेंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकेंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपकी वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत
1: जी। एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है। और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारियों के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं।
0: जी, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो है डॉक्टर है। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक महश्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है। आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं। अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। वही एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं जितने स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है। तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
1: क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें तो हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते हैं।
0: जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए, इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है

0: मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं, वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलिए अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम करता है
0: जी, तो एक गीत सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अभी आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी।

0: से साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिरदर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है।
0: बिल्कुल,
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो रेशम की जो होती है ना उससे हाँ, थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो
0: रेशम होती है। तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है, हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी है। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जैसे जंगली रेशम या वन रेशम या टसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद

0: रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल, और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी, और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूख कर काली राख में बदल जाती है। इसकी प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं।
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता है
0: कि कैसे इसको रखना है, और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना,
1: मुझे मालूम था आप कहने वाली।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने
1: जी। अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ,
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि हाँ, वो क्या लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुँचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है, हाँ, वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ,
1: ये ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते रहते हैं।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
1: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है इसको, है ना।
1: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है हम वो कर सकें, न कि हम उसमें लग के अपने को नुकसान पहुंचाएं।

0: जीवन को हम बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवाकर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं, या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा।
1: कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। हाँ। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं। हाँ। फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
0: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है। आप हार कर भी जीत जाते हैं।
1: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे खुशी दे सके, हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये होती है।
0: प्रतियोगिता
1: चेहरे की हंसी देखिए, आपको लगेगा
0: मजा। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता
1: अपने मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, जब भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें,
1: वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें, किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदा नहीं जी, अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और आगे भी रहेगा।
0: हाँ जी आगे भी रहेगा। वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं पकौड़े,
1: बनाकर लेकर आए हमारे लिए।
0: बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं, जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खोलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खोलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार,
0: ऐसी तो मतलब सोच नहीं सकते।
1: बिल्कुल, इन्होंने देखिए कितना इसको काव्यात्मक तरीके से, क्लासिक तरीके से पेश किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से है ना अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा जो है मजा दोगुना हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए आलू, पालक, बेसन लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज, आलू और पालक ले लें, इसमें नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाए, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डाले और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बनाकर पकौड़े डाल दें, कुरकुरा होने तक इसको पकाएं, मध्यम आंच पर दोनों तरफ से इसको हिलाकर पकाते रहें, अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताई है, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाई आती
0: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि निकली
1: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
0: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
0: और हमारे जो एक हमारी जो श्रोता है वो लिखते हैं कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली

0: में हो मजा दुगना हर पल हो। दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू। मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत, पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
1: बाप रे क्या बात है। देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया है ना।
0: मैंने कहा ना
1: और कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी, टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है। भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आती बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर, मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज, आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं। ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गर्म होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें। पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी। तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए। पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए। अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें। और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं। और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
1: तो पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद
0: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा
1: जी।
0: तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
2: जी अवश्य।
1: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
2: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माता जी अध्यापिका थी और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहां से मैंने बीए किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहां मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
1: जी, तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे।
2: जी,
1: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
2: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियां, कुछ कविताएं, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीजें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
1: जी, तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
2: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
1: जी,
2: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूँ ठीक से, उनको बोलता भी हूँ। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
1: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
2: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
1: अच्छा।
2: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का जो था, तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं लिख सकता हूँ। मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
1: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
2: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा

0: में छपी थी उसका शीर्षक था अपराजेय, और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं ना कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
1: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
0: जी,
1: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
0: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी, मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
1: जी,
0: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लोक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए, और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई है, ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती है नकारात्मकता को दूर करके।
1: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं, और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती है। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
0: मेरे सबसे करीब कहानी या तो जो पहली कहानी थी अपराजेय जो मनोरमा में छपी थी, या फिर दूसरी कहानी जो हंस में छपी थी जिसका शीर्षक था उसका आकाश।
1: उसका आकाश
0: जी, ये कहानी मुझे बहुत प्रिय रही है, और इस कहानी ने पाठकों में एक विमर्श पैदा किया था, उस पर पत्रिका में भी अगले अंकों में उस पर समीक्षाएं आई थी, उसका जिक्र हुआ था, और कुछ पाठकों ने मुझे निजी तौर पर पत्र लिख करके या फोन करके उस पर बात की थी।
1: जी, तो कहानी लिखते लिखते अचानक व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण की ओर आना कैसे हुआ?
0: जी, ये सब मुझे लगता है कि एकदम स्वाभाविक रूप से हुआ था। कहानी लिखना मैंने शुरू किया, लेकिन कहानियां मेरी यथार्थ पर आधारित होती थी। किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था
1: जी,
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर 3 भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा, और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई
1: जी।
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है
1: जी। तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक, उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और 2-3 राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई
1: जी।
0: कहीं ना कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया
1: जी। यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी,
1: मिला
0: जी।
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या
0: बड़ा सकारात्मक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत सुंदर क्लासिक गीत है ये।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता और गिद्धों का स्वर्णकाल, अंधे पीसे और साहित्य के शनिदेव, ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं, वो मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है, जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है। ये सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए तो। जब वह नए कुत्ते पर भौंकता तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं ना कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है, वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि

0: व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना
1: जी,
0: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का
1: जी,
0: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहां वहां फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
1: जी, जी।
0: तीसरा जो है वो अंधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है, पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाया जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जी ने समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों के पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई तीन पेज चार पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के सनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संग्रह। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है, उसमें और भी जो व्यंग है वो राजनीतिक सामाजिक घटनाक्रमों पर है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
1: हो रहा है,
0: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सनिदेव में मिलेगी।
1: जी, तो व्यंग में अगर हम बात करें परसा युग से अब तक कितना बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
0: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं, हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है। जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतीय हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
1: जी।
0: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
1: जी।
0: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे, पत्रिकाएं छापेंगे। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया, धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे। अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई,
1: पाठक भी वो एक बड़ा वर्ग था पाठक का।
0: हाँ, बहुत बड़ा वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग था पाठक का, और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कब हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
1: जी।
0: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
1: जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल।

0: क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है। अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं, हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं। तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राडी जी।
1: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है, मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूँ और मुझे एक गीत बहुत पसंद है किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से, कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम
0: इसमें तेरा। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता है। राडी साहब, व्यंग की बात हम कर रही हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है। जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू के राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है। प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए। हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी,
1: आपने मीम्स की बात की है। मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी, पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी,
1: जो 4,000-5,000 शब्दों के होते थे और उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम है, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहां तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं, और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं। हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है। आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं हो पाया। जी,
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका ले किसका ना ले, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है, इसलिए

0: मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। मेरा अनुमान ऐसा है
1: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्रि कर देना चाहते हैं, क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है। तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है। तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप व्यंग लेखक हैं, क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
0: जी, ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहां तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है।
1: जी।
0: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
1: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
0: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है? व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
1: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी
0: चाहिए। उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं, किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
1: जी, जी। हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
0: जी।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
0: जी जरूर। कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
1: क्या बात है।
0: ये मैं चाहूंगा कि आप सुन
1: आई सुनते

0: आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग्य नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग्य लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीज तुरंत मिलती जा रही है, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
1: जी जी, एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए
0: जी।
1: और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
0: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है, और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
1: जी,
0: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है, कुएं का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है, और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
1: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
0: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे, जैसे हमारे यहाँ सूरदास
1: जी,
0: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्रिय थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
1: जी, जी।
0: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
1: जी जी,
0: जिन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत, यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पल्लवन
1: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो जब बात रचनात्मकता की आती है, तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
0: जी।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव, आपकी यायावरी है इसमें, एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें।
2: जी, यायावरी मेरी प्रारंभिक प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थी और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी
1: जी।
2: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
2: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी
1: जी,
2: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण को सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों के एक दृष्टि देता

0: है और जो उसको पढ़कर के यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण में किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं।
1: जी
0: मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं।
1: जी
0: और वहां पर जाकर के मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके अंदर जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है।
1: जी
0: जी
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा
0: जी
1: जोखा लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगे दर्शन दृष्टि और पांव, दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है और जो जीवन दर्शन है वो दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए, धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं। मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं। आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह, इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी, इन सभी का आपने इसमें वर्णन किया है। बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूँ कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूँ, ज्योतिर्लिंगों में जाता हूँ जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट के उनको दर्शन मिलता है लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी में मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं, प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है। मुझे इस बात की, आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत का और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

दोस्तों आज वक्त है कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड का। इस कार्यक्रम में आपके लिए होंगे कुछ बेहतरीन नगमे, सदाबहार नगमे, पुराने गीत, साथ ही कुछ गीतों के बनने की कहानियां और मैं आनंद। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म गाइड के इस गीत के साथ।

शंकर जयकिशन और शैलेंद्र हसरत जयपुरी अक्सर गीतों पर काम करने के लिए खंडाला जाया करते थे। रास्ते में वे एक छोटे से होटल पर रुकते थे। वहां पर एक तेलुगु वेटर था जिसका नाम था रमैया। एक दिन ये सब लोग जो हैं ये जा रहे थे खंडाला की तरफ, और रास्ते में ये उसी होटल पर रुके और इन्होंने रमैया को कुछ लाने के लिए कहा, लेकिन रमैया बहुत देर तक नहीं आया। वो वेटर जो है वो बहुत देर तक नहीं आया। तब शंकर जयकिशन में से शंकर ने उसे तेलुगु में पुकारा, रमैया वस्ता वैया। और जैसे ही जयकिशन ने इस आवाज को सुना, रमैया वस्ता वैया, उन्होंने अगली लाइन जोड़ दी, मैंने दिल तुझको दिया। वहीं से मिला हम सबको ये बेहतरीन गाना।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड, आकाशवाणी हिसार एफ एम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म तीसरी कसम से।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है,
4: विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड ला थॉमस अल्वा एडिसन,
0: कोई कला में उत्कृष्ट है,
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। जब जब फूल खिले आई, आपने सुना इस फिल्म का गीत, आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अभिमान से।

तलखियां, और उसमें उन्होंने एक नज्म लिखी। इसी नज्म को सरल बनाया गया ताकि इसे किसी फिल्म में यूज किया जा सके। खयाम साहब ने इसकी धुन बनाई 1950 में चेतन आनंद की एक अनरिलीज्ड फिल्म के लिए। उस वक्त गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा ने इसे रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म जैसा कि मैंने कहा रिलीज नहीं हो पाई और ये धुन एज इट इज पड़ी रह गई। बरसों बाद यश चोपड़ा जी एक फिल्म बना रहे थे 1970s में, तब उन्हें उस धुन की याद आई और उन्होंने इस धुन को यूज किया फिल्म कभी कभी में, जिसे आवाज दी मुकेश जी ने। ये भी एक बेहद रोचक किस्सा है कि इस गाने को रिकॉर्ड करने से दो दिन पहले मुकेश जी को हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन अगले दिन उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया हार्ट अटैक आने के बाद, और उसके बाद इस गाने को सुनने के लिए मुकेश जी नहीं रहे। आइए सुनते हैं वही गीत।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी आनंद के साथ। आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं हमेशा की तरह। हमारा नंबर वही है 9729253272।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है।

0: ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के

0: मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको, कानपुर हमीरपुर महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम रूपरेखा। अभी 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसके उपरांत 6:20 पर कार्यक्रम भक्ति संगीत का प्रसारण होगा। शाम 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम युवा उमंग। शाम 7:00 बजे समय रहेगा कार्यक्रम खेती किसाना सेती का, जिसमें बातचीत का विषय रहेगा पोल्ट्री बकरी और मत्स्य पालन, कम लागत में मुर्गी और बकरी पालन के शेड तैयार करना, मिश्रित मछली पालन और तालाब का जल प्रबंधन।

शाम 7:30 पर कार्यक्रम भारी गांव में बातचीत का विषय रहेगा स्वच्छता और स्वास्थ्य। फिल्म संगीत का मजा लीजिए रात्रि 8:00 और 8:30 पर कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे हरियाणा के गलियारे से।

रात्रि 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 9 बजे से आप सुन पाएंगे विविध भारती के प्रसारण।

और सभा के अंत में रात्रि 10 बजे सुनिएगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। हमारा नंबर वही है 9729295322।

आकाशवाणी हिसार से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रूपरेखा। शाम की 6:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थलसेना प्रमुख बने। थलसेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सक दिवस पर डॉक्टरों, नर्सिंग अधिकारियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मचारियों को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। इस बढ़ी हुई मजदूरी का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

0: इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि बीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: बीबीजी रामजी अधिनियम में 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का आधुनिकीकरण तेजी से किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अंबाला के नारायणगढ़ से 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस राज्य की जनता को समर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया, जिनमें 114 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई 7 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत सरोवर तैयार करने पर 223 करोड़ रुपए की लागत आई है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव एवं विधायक शैली चौधरी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मंत्रीगण, विधायकों तथा जनता से जुड़े। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्पों को तेजी से पूरा कर रही है।
3: इस महीने के कार्यकाल में हमने 66 संकल्पों को पूरा कर दिया है। 151 के ऊपर गति से काम चल रहा है। बहुत सारे दल जो वायदा करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उनको पेंडिंग रख देते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद विचार करेंगे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने कहा है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है।
0: उन्होंने कहा कि चाहे यमुनानगर पंचकुला राष्ट्रीय राजमार्ग का 1,112 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण हो या बड़ागढ़ में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण, पिछले 11.5 वर्षों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किए गए हैं।
3: पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य करवाए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का अवसर केवल नारायणगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। यह केवल परियोजनाओं का उद्घाटन नहीं है

0: बल्कि स्वस्थ हरियाणा, समृद्ध हरियाणा और विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले उन्होंने चिकित्सक दिवस पर देश एवं प्रदेश के सभी चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्करों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत के महान चिकित्सक, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट प्रशासक एवं दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता डॉ. विधान चंद्र रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। उन्होंने कहा कि डॉ. रॉय का यह विचार कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह द्वारा नारायणगढ़ से विकास कार्यों के उद्घाटन अवसर पर जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिसार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा व विधायक सावित्री जिंदल उपस्थित रहे। हिसार जिले में 4 अमृत सरोवरों का उद्घाटन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा कि हिसार में 11 अमृत सरोवर हैं, जिनमें से एक अब हांसी में चला गया है।
1: हिसार की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे अमृत सरोवर है वो टोटल वैसे पुराना हिसार की तो 11 थे, अभी हिसार क्योंकि हांसी अलग बन गया जब ये मंजूर हुए थे तो 11 थे। और इसी तरीके से अगर आज हिसार की बात करूं तो टोटल 4 जो सरोवर है उनका आज उद्घाटन विधिवत रूप से किया है।
0: उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पूरे करते हुए हम लगातार प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पलवल जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों तथा पलवल के नागरिक अस्पताल के जीर्णोद्धार कार्य के उद्घाटन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने की। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि पलवल जिला के नागरिक अस्पताल को 7 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप प्रदान किया गया है।
2: सिविल हॉस्पिटल को 7 करोड़ रुपए की लागत से उसका रेनोवेशन हो, या हमारे पहले किस प्रकार से तालाबें अब दब चुकी हैं गांवों में, लेकिन उसका सौंदर्यकरण करके उसको भव्य और दिव्य बनाने का काम नायब सिंह सैनी सरकार लगातार कर रही है। उसको लेकर ही आज हमारे पलवल जिले की 24 ऐसी तालाबों को अमृत सरोवर योजना के माध्यम से सजाया जा रहा है।
0: अंबाला के धनौरा गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 4 वर्षीय मासूम निर्वैर की मौत के बाद वकील परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट वासु रंजन ने हरियाणा और पंजाब सरकार एवं चंडीगढ़ प्रशासन को 30 दिनों के भीतर सभी खुले बोरवेल सुरक्षित रूप से बंद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न हुआ तो इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक को पत्र लिखा है, क्योंकि खुले बोरवेल मासूम बच्चों की जान के लिए लगातार गंभीर खतरा बने हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका गारंटी अधिनियम आज से लागू हुआ। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित की। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 31वें थलसेना प्रमुख बने। थलसेना प्रमुख ने कहा, भारतीय सेना किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ से 337 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। 325 अमृत सरोवर और 70 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जनता को समर्पित की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भगवान राम की अभी वो अवस्था है, वो आयु है कि चलना सीख रहे हैं। ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ाकर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

किसी वस्तु से करना चाहती हूं। अन्य कोई कवि होता तो कह देता, भगवान राम के मुख जैसा कमल है या चंद्रमा है या सूर्य है, किसी भी तेज वस्तु या सुंदर वस्तु से तुलना कर देता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें। बहुत सोचा, अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा उमंग।

नारी को नतमस्तक करो, इससे वजूद है हमारा। इसकी कोख के सुख हेतु स्वर्ग से ईश्वर ने भी खुद को उतारा। मैं वारी नारी के हर रूप पर, सीता हो या सावित्री, उसने हर रूप में पुरुषों के जीवन को संवारा और निखारा। सच में नारी के बिना इस संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज के समय में सवाल ये है, क्या हम नारी को सिर्फ कविताओं में पूज रहे हैं या हकीकत में भी उसे वह सम्मान या अधिकार दे रहे हैं? श्रोताओं, आज की नारी

0: सशक्त है, वो हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जो नारी सशक्तिकरण को सिर्फ शब्द नहीं हकीकत बनाकर दिखा रही है। एक ही घर की दो बेटियां पूनम और पुष्पा एक साथ पढ़ी, एक साथ संघर्ष किया और आज एक साथ सहायक प्राध्यापक के पद पर अपना परचम लहरा रही हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं। गांव सदनपुर से पूनम और पुष्पा, इन दोनों बहनों में से हमारे साथ आज पूनम जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में।
1: मैम, आपका बहुत बहुत आभार, और जो भी श्रोतागण मुझे सुन रहे हैं, आप सबको सादर नमन और बहुत बहुत आभार।
0: मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी, हाल ही में जो सहायक प्राध्यापक की परीक्षा हुई, पूनम जी ने उसमें 5वां रैंक प्राप्त किया और वर्तमान में राजकीय महिला महाविद्यालय हिसार में कार्यरत हैं। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई।
1: बहुत बहुत आभार मैम आपका।
0: पूनम जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि आप अभी कैसा महसूस कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है?
1: मैं अभी फिलहाल बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जिस सपने को शुरू से संजोया था वो आखिरकार पूरा हुआ, और इस सपने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक परिवार की, समाज की उम्मीदें भी थी। साथ ही एक ऐसा अंधेरा हमारे सामने था कि शिक्षा जगत में कहीं ना कहीं हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। जो हमारी मनोइच्छा होती है कि हम इस प्रकार की शिक्षण पद्धति को अपनाएं, उसे जो लागू करने का एक जरिया आप मुझे मिला है, तो निश्चित रूप से मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ।
0: तो पूनम जी, ये आपका बचपन का सपना था?
1: देखिए, जब हम शुरुआत में बहुत ही बच्चे होते हैं तब हमें अलग अलग तरह के विकल्प बताए जाते हैं। कभी हम डॉक्टर बनने की कल्पना करते हैं, कभी सोचते हैं हम बहुत अच्छा साइकिलिस्ट हो सकते हैं, कभी तो ये भी सोचते हैं कि क्या हम तैराकी में भी हाथ आजमा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक फिर भी शिक्षा के माहौल में लगातार रहते हैं, तो जब शिक्षा के माहौल में लगातार रहते हैं तो जब मैं ऐसे आपने जब सपने की बात कही तो मैं अपने बचपन में लौट गई। जैसे हम दोनों बहनें थी, साथ में स्कूल जाती थी, तो स्कूल जाते समय जब टीचर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन शुरू से ही बहुत अच्छा रहा, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ मेरे 5वीं कक्षा के अध्यापक भी आज मुझसे संपर्क में है, 3री कक्षा के अध्यापक भी आज मुझसे संपर्क में है। तो उनका जो उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो बातचीत करने का ढंग है, वो मुझे हमेशा से ही आकर्षित करता रहा। तो जब 3री कक्षा से हम 5वीं में हुए, उसके बाद हमें जब 3री कक्षा में थे तो लगा कि 3री कक्षा का अध्यापक होना अपने आप में बड़ी बात है। जब 5वीं कक्षा में हुई तो लगा कि 5वीं का अध्यापक होना चाहिए। ऐसे जिस प्रकार हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते गए, वहाँ की जो अध्यापकीय माहौल है, उनकी जो विचार शैली है और जीवन शैली है, उनसे हम प्रभावित होते गए और लगा कि हम इस रूप को अपनाएं कि इस रूप को अपनाएं। तो एक दौरा तब आई जब हम 10वीं क्लास में थे, तो 10वीं कक्षा हुई तो ऐसे तय करना था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट एक रखना है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो यहाँ पर कुछ एक चीजें हुई हमारे साथ जिन्हें साझा करना मैं जरूरी समझती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने एक रास्ता है, आपने एक रास्ते पे आगे जाके अपनी जो जीवन शैली उसी, मतलब जो अगर आपने साइंस फील्ड को चूज किया तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, उसी को आप साझा भी करेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ जब 11वीं कक्षा में हुए तो कई अध्यापकों ने हमें कहा कि, क्योंकि हम शुरू से ही, मैं बताऊं कि हमारा जो मेरे पिताजी है शिक्षा के प्रति थोड़ा जागरूक रहे, और जो मेरे बड़े भैया हैं जो अभी IFS पद पर कार्यरत हैं, उनका जो हमारे एक मार्गदर्शक के रूप में थे, तो वो निरंतर इस बात का ध्यान रखते कि जिधर इनका रुझान है उधर उनको लेकर जाएं। लेकिन सबका ऐसी मनोवृत्ति नहीं होती, सबकी ऐसी सोच नहीं होती। बहुत सारे सोचते हैं कि कला जगत है ये तो अपने आप में निरर्थक बात है, कला जगत को हम आमतौर पर आज भी मैं कहूंगी कि उतने समान हक नहीं मिल पाए हैं। तो जब बात आती है श्रेष्ठ पढ़ने लिखने वाले बच्चे की, तो ये पहले से ही तय कर लिया जाता है कि या तो वो गणित संकाय में जाएगा या तो फिर वो साइंस संकाय में जाएगा। पर हमने कहा कि हमें तो कला संकाय में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें कहानियां आकर्षित करती है, हमें तो समाज विज्ञान आकर्षित करता है। तो ऐसे में जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि साइंस, तो मैं एग्जैक्ट शब्द बता रही हूँ कि साइंस तो गर्म हलवा है और आर्ट्स तो ठंडा हलवा है। फिर हमने कहा हलवे की बात नहीं, हमें हमारे जीवन शैली अपनानी है। तो 11वीं कक्षा में आए बिना किसी बाहरी दबाव के हमने तय कर लिया। हालांकि मेरे पिताजी को थोड़ा डाउट था, क्योंकि भैया गणित

0: विषय में अच्छे थे, तो
1: हाँ जी
0: उन्हें लगा कि शायद गणित में भी कोशिश कर ले, लेकिन हमने कहा नहीं, गणित क्योंकि हर एक की अप्रोच अलग अलग होती है, कोई लॉजिकल माइंडसेट में अच्छा है, किसी की क्रिएटिविटी अच्छी है,
1: जी
0: कोई स्पीकिंग स्किल में अच्छा है, जैसे आप बहुत अच्छा अभी आपका संचालन रह रहा है तो आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है, लेकिन हमारी थोड़ा क्रिएटिव माइंडसेट है, हम कल्पना कर सकते हैं, तो हमने अपने आप को साहित्य और जो समाज विज्ञान है उसके अकॉर्डिंग पाया, तो हमने बिना किसी बाहरी दबाव के इस डिसीजन को लिया, और इसमें मेरी बहन और मैं, क्योंकि हम दोनों आपस में बातचीत करते थे, हम दोनों ने ये तय किया, हालांकि 10वीं में गणित के नंबर इतने अच्छे हैं कि क्या पता हम साइंस में साइंस को छोड़ के गलत तो नहीं करें, लेकिन एक अंदर की आवाज़ होती है जहाँ
1: जी
0: पे आप सोचते कि या हाँ
1: कि हमें
0: ये
1: ये करना चाहिए।
0: हाँ, उसको हमेशा ही कभी इग्नोर मत करो समाज के दबाव में कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि मैंने जितने उदाहरण मैं यहाँ पर दूंगी, बहुत बार ऐसा भी माना जाता है कि या तो डॉक्टरी का कर लो, डॉक्टरी का नहीं तो एमबीए वाला कर लो, साइंस वाले तो ऐसे ही घूमते
1: हाँ
0: हैं
1: कई बार बस दबाव
0: ऐसे
1: दिया जाता है बच्चों पे कि ये कर लो, बच्चे से नहीं पूछा जाता कि आपने क्या करना है।
0: हाँ, बच्चे से नहीं पूछा जाता, बहुत बार आपके पड़ोस में किसी ने साइंस में अच्छा कर लिया तो आपको भी साइंस में धकेल दिया जाता है, जो कि अपने आप में एक यातना है, मैं कहूंगी कि जिसके लिए आप बने ही नहीं, उसी जीवन शैली में आपको ढालने की एक यंत्र आप बन जाते हैं, तो आप कभी यंत्र मत बनिए, हो सकता है उस समय आपके पास संसाधन कम है, हो सकता है उस समय आपकी गाइडेंस करने वाले नहीं है, लेकिन अगर आप गलत रास्ते ही गलत ले लिया तो बाद में तो कोई संभावना उम्मीद भी नहीं शेष बचती।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका ये सहायक प्राध्यापक बनने का सफर कैसा रहा?
0: सहायक प्राध्यापक बनने का सफर मेरा, जैसे हम जो दोनों बहनें थी 10वीं शुरू से ही, देखिए कहीं न कहीं अध्यापकों का योगदान कहूँ या माता पिता का सहयोग कहूँ या मेरी बहन का और मेरी थोड़ी स्टडी को लेकर अप्रोच अच्छी थी, ये कहूँ कि हम 10वीं से 12वीं में कभी कक्षा में हम इंटरेक्टिव से स्टूडेंट रहे, जो हमेशा अध्यापकों से प्रश्न पूछेगा, बातचीत करके जानना चाहेगा, तो ऐसे में जो सफर है, जो दोनों बहनों का साथ सफर रहा, तो 10वीं कक्षा है 12वीं कक्षा में हम दोनों बोर्ड टॉपर रहे, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आए तो एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज से हमने अपनी ग्रेजुएशन की,
1: जी
0: तो मेरी बहन जैसे यूनिवर्सिटी की टॉपर रही और मेरी भी अच्छी पोजीशन रही, तो यहाँ पर एक बात तो तय हो गई कि हमारा सफर बहुत ही स्मूथ चल रहा था
1: अच्छा चल रहा है।
0: जी,
1: जी
0: और उसके बाद में मास्टर्स में हमें जेएनयू में पढ़ने का मौका मिला नई दिल्ली में, तो वहाँ पर हम थोड़े अन्य राज्यों के विद्यार्थियों से परिचित हो पाए और अपना स्तर सुधार पाए, इसकी बाद में जो हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आई और हम इस मुकाम को हासिल कर
1: जी
0: पाए।
1: पूनम जी, मैं जानना चाहूंगी, जैसे हम कोई नया काम शुरू करते हैं किसी भी विषय को लेकर, तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां सामने आ जाती हैं। तो इस सफर में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? लोगों की सोच, आर्थिक तंगी या पढ़ाई का दबाव? आपने इन सबको कैसे सामना किया?
0: जैसे आपने तीन ऑप्शन दिए, लोगों की सोच, आर्थिक
1: आर्थिक
0: तंगी
1: तंगी,
0: और पढ़ाई
1: पढ़ाई का
0: का
1: दबाव।
0: दबाव, देखिए पढ़ाई का दबाव तो देखिए मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जितनी एजुकेशन सिस्टम है, फिलहाल तो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं कंपटीशन बेस्ड है बजाय कि सहयोगात्मक नहीं है, तो ऐसे में जो घर का माहौल है वो आपको बताता है कि आप कितना कोऑपरेटिव होकर काम करेंगे, तो दबाव था इतना था कि आप कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहे, मेरे माता पिता ने हमेशा यही कहा कि वो हम समय पर आप देंगे लेकिन आपने अपने एफर्ट करने, बस इतना दबाव था कि कहीं वो हमें समय दे रहे हैं, हमें संसाधन दे रहे हैं, कहीं हम उनका ऐसा ना हो कि हम उसको अच्छे से समय पर इस्तेमाल ही ना कर पाए, और जहाँ तक लोगों की सोच है तो मैंने कहा मैं अध्यापकों के बहुत करीब रही, तो अध्यापक
1: जी
0: तो हमेशा ही मेरे को ऐसे कहते थे अगर मैं आज इस क्लास में हूँ तो वो मुझे हमेशा ही मोटिवेट करते थे, लेकिन हाँ कुछ इक्का दुक्का खबरें हम सुन लेते
1: हो
0: हैं आस
1: जाती
0: पड़ोस
1: है।
0: की कि उनकी बेटी ने अपनी मर्जी से कोई कदम उठा लिया, और उसको नकारात्मक रूप से ही देखा जाता है आमतौर पर
1: उसके बाद
0: समाज में,
1: फिर लड़कियों अपने
0: तो फिर हमें शिक्षा को लेकर भी हम पे वैसे प्रेशर बनाने लगते हैं कि जैसे आमतौर पर ग्रामीण समाज में ऐसा होता है, हालांकि मेरे माता पिता थोड़े शिक्षित थे तो ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा हुआ ऐसा होता है कि देखिए हम आपको बजाय बेटे के बेटी पर अतिरिक्त दबाव रहता है, थोड़ा तो रहता है कि देखो और कोई को संसाधन उपलब्ध नहीं करवा रहे, तुम्हें करवा रहे तो तुम्हें रिजल्ट देना होगा,
1: करना है।
0: तो ये वाला प्रेशर तो देखिए मैम रहता ही है।

0: वरना रहता है कि देखो किसी किसी को तो संसाधन भी नहीं आपको मिल रहे हैं, तो ये हमारे खुद के द्वारा लिया गया दबाव है, उनके द्वारा नहीं दिया गया। वो तो खैर आस पड़ोस की खबरें भी देखते हैं तो हम तक नहीं पहुंचाते नकारात्मक। और जहां तक तीसरा सवाल था, एक तो आंतरिक दबाव की बात हो गई लोगों की सोच, और जो तीसरी बात आर्थिक तंगी। शुरुआती दौर में मैं कहूंगी आर्थिक संसाधन हमारे पास बहुत कम थे, जैसे मेरे
1: जी
0: पिताजी बाद में जो जॉब में आए, एबीआरसी की पोस्ट पर आए, उससे पहले हम किसान के रूप में, हमने भी खेत में काम किया है, और हम संयुक्त परिवार में तो पांचों बहन भाई खेत में जाते थे। लेकिन जब से हमने अच्छा परफॉर्मेंस शुरू किया 10th क्लास से,
1: जी
0: 8वीं कक्षा से हम थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर भारत को जानो कंपटीशन में आगे बढ़े, तो तब से मेरे पिताजी ने जैसे जैसे देखा कि इनका पढ़ाई के प्रति जितना रुझान बढ़ रहा है, उतना ही खेत के काम से हटा दिया, और धीरे धीरे करके हमें घर के कामों से भी हटा दिया।
1: जी
0: तो यहाँ पर मैं मेरे माता पिता की सोच को तो मैं सलाम ही करूंगी, क्योंकि उन्होंने समझा कि हमारे अंदर पढ़ने को लेकर जुनून है, जज्बा है, और उन्होंने कभी इस चीज को
1: जी
0: मरने नहीं
1: माता
0: दिया।
1: पिता का सहयोग बहुत
0: जी
1: जरूरी है, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, आप खुद ही एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण है। आपके हिसाब से आज की लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा, आत्मविश्वास या परिवार का सहयोग?
0: देखिए, आपने नारी सशक्तिकरण की बात की, यहाँ पर मैं मनुष्यता के तकाजे से बात करूंगी, क्योंकि जब हम लड़की और लड़के के अंदर भेद करते हैं ना, तो वहां से परवरिश में भी भेद शुरू होना शुरू हो जाता है हमारे समाज में,
1: जी
0: क्योंकि माना जाता है कि लड़की को इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि मतलब एक नियंत्रण में उन्हें रखा जाता है। एक मनुष्य को जितने संसाधन मिलने चाहिए, चाहे वो लड़का है लड़की है, उन्हें मिलना चाहिए। और जहां तक बात शिक्षा की है, देखिए शिक्षा एक करियर तो मैंने मान लिया कि करियर की बात है, लेकिन आप शुरू से देखिए, तीसरी से हम पढ़ते आए हैं, 5वीं 8वीं 10वीं
1: जी
0: 12वीं, तो हम सीखते हैं एक जीवन शैली। यहाँ पे मैं शिक्षा में थोड़ा सा वो भी चाहूंगी कि व्यवहारिक रूप से हमें शिक्षा मिले, और वो शिक्षा एक तो हमें करियर बेस्ड तो होगी होगी, प्लस में हमें अपने आप से आत्मविश्वास लेकर आए, क्योंकि शिक्षा जीवन शैली है। शिक्षा को सिर्फ किताबों तक तो हम सीमित
1: सीमित
0: रख
1: नहीं
0: नहीं
1: रह
0: सकते।
1: सकते।
0: और परिवार का सहयोग, देखिए परिवार क्या होता है कि परिवार एक संस्था है जिसमें सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को के विकास में सहयोगी बने,
1: जी
0: बजाय कि कोई नियंत्रण की संस्था परिवार बने, तो उसे तो हम एक प्रकार से कैदी कहेंगे, अगर ऐसा परिवार है जो हमें बंदिशें लगा रहे हैं, जो हमें हमारे सपने पूरे करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम मात्र जीवन जीने के लिए थोड़ी ना हमारा अपना उद्देश्य है? जीवन को सार्थक बनाने के लिए परिवार का सहयोग जरूरी है। जब परिवार का सहयोग मिलता है और एक व्यवहारिक शिक्षा मिलती है जिसमें हम आपस में सहयोग कर रहे हैं, बजाय कि कंपटीशन की ये फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, इसने सीखा कितना, समाज में लागू कितना किया, उसके बाद अगर वो शिक्षा लागू होती है तो आत्मविश्वास तो वहीं से आएगा, क्योंकि आपका
1: आपसी
0: रास्ता
1: सहयोग से
0: सही
1: ही
0: है।
1: आत्मविश्वास
0: हाँ
1: बन रहा है।
0: हाँ जी
1: अब देखा है हमने, जैसे कई घरों में बोल देते हैं कि बेटी को ज्यादा पढ़ा कर क्या करेंगे, शादी ही तो करनी है, अगले घर जाना है। इस सोच के लिए आपका क्या संदेश है?
0: देखिए, यहाँ पर भी यही बात है, जब हमने बात कर दी बेटी की, तो वहां से फिर हम कविता भी यही बताते हैं ना उन्हें कि मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसे गोल, क्या स्कूल में जाकर भी वो यही सीख रहे हैं ना
1: जी
0: कि दादाजी की चश्मा गोल, दादी जी का डंडा गोल, क्यों भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा, यही तो मैं कह रही हूँ, किताब की शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा हमने अलग अलग कर दी। और जहां तक शिक्षा की बात नहीं है, सिर्फ जब आपने कहा कि बेटी की शादी, देखिए विवाह एक ऐसी चीज है जहां पर दो व्यक्ति आपसी मतलब समझ से एक दूसरे के साथ बढ़ते कि एक दूसरे के साथ विकास करेंगे, ठीक है, इसी को मैं विवाह मानती हूँ। देखिए हमारी जो परंपरागत रूप में विवाह ऐसी संस्था है जहाँ पे एक तो लड़की को अपना घर छोड़ना है, शायद उन्हें सपने भी छोड़ने हैं, उसे
1: जी
0: उनकी मर्जी के बिना, पता नहीं मतलब एक अजीब सा हमारे समाज में लड़कियों को लेकर एक अंधेरी सी कल्पना है विवाह को। तो एक तो मेरे ख्याल से इस विवाह संस्था में ही थोड़ा तो सकारात्मक बदलाव होना ही चाहिए,
1: होना
0: अगर मैं लड़की
1: चाहिए।
0: के पक्ष में बात करूं। और दूसरा बात है कि बेटी को ज्यादा पढ़ाना, देखिए पढ़ाना, ज्यादा पढ़ाना, कम पढ़ाना, ये तो वही बात है ना कि हम उपयोगी दृष्टि से शिक्षा को ले रहे हैं।
1: जी
0: शिक्षा क्या है? अब शिक्षा वो खुद तय करेगी कि मुझे कितना पढ़ना है, और वो खुद तय करेगी कि मेरा आगे का भविष्य क्या
1: भविष्य
0: होगा।
1: क्या
0: फिर
1: होगा?
0: आपने उसे पढ़ाया क्या जब वो अपना
1: आपके
0: निर्णय ही नहीं ले
1: अनु
0: पा रही
1: आपके
0: है?
1: अनुसार से पढ़ रही है।
0: हाँ, और यहाँ पे एक बात मैं बेटी की ओर से भी कहूंगी, क्योंकि जब बेटी को पढ़ाया जा रहा है या बेटे को पढ़ाया जा रहा है, तो हमें ये बात व्यवहारिक शिक्षा की बात क्या है, आज हम जो सीख के आ रहे हैं, क्या हम अब जाके अपने घर वालों से बातचीत कर रहे हैं? हम तो शिक्षित हो गए, उनकी सोच तो वही है, बाद
1: जी
0: में आपस में द्वंद्व होता है, ये इसी वजह से द्वंद्व
1: इसीलिए
0: होता है। तो इसके माध्यम से आपसी समन्वय सामंजस्य से शिक्षा को लाएंगे, तो ना तो ये सवाल आएगा कि ज्यादा पढ़ाना है, एक शादी एक परंपरागत बोझ नहीं रहेगा, और इससे क्या होता है, एक मानवीय स्तर पर हम विकास कर
1: अच्छा,
0: पाएंगे।
1: आपकी एक व्यक्तिगत राय लेना चाहूंगी कि आप एक महिला प्रोफेसर हैं, तो सबसे पहले अपने छात्राओं को आप क्या सीख देना चाहेंगे?
0: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है महिला प्रोफेसर होने के नाते, क्योंकि मैं महिला प्रोफेसर हूँ, इसके साथ ही मैं जो जितनी भी मेरी छात्राएं होंगी, मैं उनको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप एक स्वतंत्र मनुष्य हैं और आपको मनुष्य के रूप में जीवन जीने के सारे अधिकार हैं,
1: जी
0: और जीवन जीने के अधिकार के साथ यह भी अधिकार आता है कि आज आपने जितनी शिक्षा ली है, जितनी आपकी समझ है, आपको किसी के सामाजिक दबाव में, पारिवारिक दबाव में नहीं रहना है, आप एक सहयोगी समाज की और अपने आप को आगे बढ़ाएं। साथ ही इस बात को, तो जैसे आपने शादी का सवाल किया था, शादी तो देखिए हमारे समाज में जिस प्रकार की अंधियारी व्यवस्था है, उसकी बजाय यहाँ पे करियर की उन्मुख, आप अपने आप में सशक्त है कि नहीं है आप, क्योंकि अगर बिना करियर बनाए, मैं मेरी छात्राओं को यही कहूंगी, सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो आज आप शिक्षा ले रहे हो उसे किताबों तक सीमित मत रखिए, देखिए समाज में क्या घटित हो रहा है और आपकी शिक्षा उसमें कुछ बदलाव ला रही है, समझने में योगदान कर रही है कि नहीं कर रही है। मैं शिक्षा को, जैसे मैं साहित्य पढ़ाऊंगी, तो मैं बताऊंगी उन्हें कि आज ये मैंने उपन्यास पढ़ाया, देखो समाज में ये चीज हमें कहाँ दिख रही है,
1: कहा
0: तो ये
1: जी हाँ,
0: समाज का सच बता
1: चीजों को
0: रही है और समाज।
1: प्रैक्टिकली करना भी
0: बिल्कुल।
1: जी
0: तो इसमें मैं एक बात और कहूंगी कि एक तो मेरा सब्जेक्ट होगा वो प्रैक्टिकल होगा, दूसरा मैं मेरी जितनी भी छात्राएं होगी मैं उनको एक आत्मबल और आत्मसम्मान की शिक्षा दूंगी कि आप अपने फैसले खुद लीजिए, ऐसे नहीं कि फैसले लेने तो वो हवा में लेने, तर्क के
1: तरह के
0: साथ
1: साथ
0: आप अपनी बात रखिए, तर्क के साथ, सम्मान के साथ, क्योंकि माना कुछ परंपराएं हमारी ऐसी है जिनमें बदलाव की जरूरत है, लेकिन वो भी आपसी सहयोग और सामंजस्य से ही तो बदली जा
1: बदली जा
0: सकती है,
1: सकती
0: लेकिन
1: है।
0: उन्हें बदलना बहुत जरूरी है, वरना विवाह को कहीं ना कहीं हम देखते हैं समाज में ऐसे सोचते हैं कि बीए करवा लो ताकि ये विवाह की योग्यताएं पूरी हो जाए, नहीं, वो उसके विवाह की योग्यताएं
1: कुछ
0: नहीं है,
1: योग्यता विवाह के लिए भी पूरी करवाई जाती
0: वो
1: है।
0: उसकी समझ की बात है सिर्फ। जी
1: एक सबसे बड़ा डर रहता है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जहां तक लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बात रखी है, तो यहाँ पे हम दो प्रकार की सुरक्षाओं की बात करेंगे, एक तो उन्हें शारीरिक रूप से सुरक्षा, जैसे मैं हम कहते हैं आजकल इतने अपराध महिलाओं पर हो रहे, चाहे एसिड अटैक बोल दो, रैप हो रहे हैं, या फिर घरेलू हिंसा हो गई है ना,
1: जी
0: और दूसरी जो सुरक्षा की बात है, हम कहेंगे कि वो अपने आप को एक व्यक्तित्व के तौर पर कैसा महसूस कर रही है, वो अपने आप को दबा हुआ, अपने आत्मसम्मान को कुचला हुआ महसूस कर रही है नहीं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा मानती हूँ कि जब सुरक्षा की बात आती है, तो सबसे पहले हमने परवरिश में ही दो किया है कि लड़की है जो वो हम समाज में अपनी भूमिका निभाए ना निभाए, घर को चमकाना उसका काम है,
1: जी
0: उन्हें हर पहलू पे, चाहे घर में कोई आर्थिक फैसले लिए जा रहे हैं, पारिवारिक फैसले लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, उसमें वो भागीदारी करे, प्लस में जो हमारे आज हम कोएड की बात करते हैं कि सह शिक्षा होनी चाहिए, ऐसे ही घर का वातावरण है ना, वो सह ऐसे वातावरण हो कि हम आपस में बातचीत कर रहे
1: बातचीत
0: हैं,
1: कर
0: यहाँ पे
1: सकें।
0: दीवार नहीं होनी चाहिए प्रवेश में कि ये काम तो कि माँ कान में बेटी को कुछ समझा रही कि तुम बाहर जाइयो तो हंसियो मत, बाहर जाइयो तो ये मत करियो वो मत करियो, क्या यहाँ पर हमारे जो भी बेटे, क्या उनको कुछ सीख दी जाती है क्या उनसे? तो मैं, मेरे ख्याल से जो बेसिक बातें मैं यहाँ पे करूंगी, जो हमारी जो पीरियड्स की बात है या बेसिक चीजें,
1: जी
0: वो तक हम आपस में साझा नहीं कर रहे जबकि वो तो एक जैविक घटना है।
1: हाँ जी
0: ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमें, हमारी जो माताएं हैं उनको भी, उनको शायद पता नहीं है कि वो एक मनुष्य के रूप में जीवन जी सकती है और इसमें कुछ गलत नहीं है, अनैतिक नहीं है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको एक सहज माहौल दे घर में, उन्हें बेटे के काम क्या है, बेटी के काम ये नहीं सिखाना, उन्हें बताना एक मनुष्य का काम क्या है, उसके बाद जब वो समाज में निकलेंगे तो वो अपने आप ही, और एक व्यक्ति मान लिया चलो हमने हमारे परिवार का माहौल सेट कर लिया लेकिन बाहर के लोग नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको अपने करियर पर पकड़ बनानी
1: पकड़
0: है।
1: बनानी है।
0: जब आपके पास करियर की पकड़ होगी तो एक एक तो आपकी आर्थिक क्षमता ठीक होगी, साथ ही आप में एक फैसले लेने की जो क्षमता है शिक्षा के माध्यम से, आप तर्कशील लोग हो पाएंगे, विवेकवान हो पाएंगे और समाज में भी अपनी भूमिका निभा
1: निभा
0: पाएंगे।
1: पाएंगे।
0: जी
1: तो सुरक्षा की ही बात कर रहे थे पूनम।

0: जी, तो सुरक्षा की बात करते करते एक कविता याद आती है। गुड़िया जैसे शोक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिन क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: तो
1: बढ़िया।
0: कहने का मतलब है कि आज के समय में बेटियों का सशक्त होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आपको आपकी सुरक्षा खुद करनी है। आशा है कार्यक्रम सुनने वाली बेटियां इस बात पर अमल करेंगी। चलते चलते आपसे एक अंतिम प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी। वो माता पिता जो अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने से डरते हैं, इसी वजह से जो कुछ बेटियां हार मान लेती हैं, हताश हो जाती हैं बिल्कुल, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ जी, जो आपका ये प्रश्न है बहुत ही उचित प्रश्न है आज के समय में। देखिए, तो आपने कहा कि जो अपनी बेटी को आगे पढ़ाने से डरते हैं, तो यहाँ पे मैं ये भी उत्तर नहीं दूंगी कि बेटी को बेटा मानो। नहीं, बेटी को बेटा मानने की कोई जरूरत नहीं, वो बेटी के रूप में पैदा हुई है और वो बेटा बेटा के रूप में पैदा हुआ। लेकिन बात ये कि आप, मैं पहले भी कहा कि हम उसको मनुष्य कितना बना रहे हैं हम, क्योंकि जब हमने ये बात ही नहीं जानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है। हमारे समाज में शिक्षा को सिर्फ करियर के तक रखा है, और करियर भी ये सोचा जाता है कि बेटे को तो बनाना है, क्योंकि जो पत्नी आएगी वो तो वैसे भी उस पर निर्भर होगी।
0: अरे
1: या हमें
0: बाबा,
1: माना जाता है कि इन्हें इतना पढ़ा देना है कि जिससे
0: शादी
1: विवाह
0: वाली कर
1: की
0: सके।
1: योग्यताएं पूरी हो जाए, क्योंकि अब तो विवाह की भी योग्यताएं तय कर दी गई है। तो ये हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि शिक्षा और विवाह दोनों अलग-अलग चीजें हैं, और दोनों ऐसी चीजें, दोनों तर्क के साथ फैसले लेने वाली चीजें हैं। तो बेटी को आगे पढ़ाने से डरने वाले परिजनों से मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए शिक्षा हमारी जीवन शैली को सुधारता है, शिक्षा हमें तार्किक रूप से फैसले लेने के लिए असमर्थ बनाता है, शिक्षा हमारे अंधविश्वास को हटाता है, शिक्षा हमारे जो जितनी अज्ञानता के अंधेरे हैं उन सबको हटाता है। तो देखिए, शिक्षा करियर के लिए हो सकता है उन्हें थोड़ा समय लग जाए। जैसे मेरी ही बात करूं मैं, तो ये मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का चौथा एग्जाम था जिसमें मैं क्वालिफाई हुई। लेकिन
0: जी
1: ये सिर्फ मेरा करियर की तो सवाल नहीं है ना, मैं साहित्य को जीती हूँ, मैं साहित्य को पढ़ती हूँ, मुझे साहित्य पढ़ना अच्छा लगता है, मैं साहित्य के आधार पर समाज को देख पाती हूँ। तो ये पहली प्राथमिकता है मेरी, करियर दूसरी प्राथमिकता है। करियर की ये चीज मैं इंजॉय कर रही हूँ, अब मेरे को इसी में ही पैसा कमाना है, और पैसा कमाकर भी मेरे को अपनी छात्राओं को सशक्त बनाना है। तो ये अप्रोच क्लियर रखिए। बहुत बारी जो ऐसे ऐसे अप्रोच होते हैं कि हमें कोई भी नौकरी मिल जाए, तो इसका मतलब क्या कि आपके दिमाग में अपनी जीवन शैली की कोई इमेज ही नहीं है, आप कुछ भी कर रही हैं पैसे के लिए, समझ गए आप। तो
0: जी
1: ठीक इसी प्रकार परिजनों को ये बस इतना देखना है कि उनके बच्चे में टैलेंट कहाँ है, हो सकता है वो समय ले। क्योंकि जैसे मेरा आपको एक यहाँ से एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जो बेटियां हार मान लेती है, हालांकि मेरे माता पिता ने पढ़ाने से नहीं डरा, बहुत पर पिताजी थोड़ा ऐसे कह देते, उनको लगता शायद ये ले जिए, तो कह देते समय बहुत सीमित है, समय बहुत सीमित है। वो इसलिए था कि एक एज तक आते आती आपकी जो मानसिक याद करने की क्षमताएं हैं वो सब, वहां तक तो ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके विवाह की उम्र है, ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है, क्योंकि विवाह की अपने आप में कोई उम्र नहीं होती, हमारी जीवन जीने की उम्र होती है, वो
0: जी
1: ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो यहाँ पे डरने की बात मैं खुद से बताती हूँ आपका, मेरा आरपीएससी का एग्जाम था, तो एग्जाम बिल्कुल समीप आ गया और मुझे ऐसे डर लग रहा था, बहुत बहुत बार ऐसे घबराहट भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं, हम भी बच्चे ही हैं, हमारे ऊपर भी एग्जाम, क्योंकि ऐसा है कि आपकी मेंटल उसका टेस्ट लेगा, ऐसे नहीं कि आप कितना समझे, आपने याद कितना किया उसका
0: या
1: टेस्ट
0: उसका
1: लेता
0: टेस्ट नहीं
1: है।
0: लग।
1: तो ऐसे में बहुत बार ऐसे घबराहट हो जाती, पूरी शरीर में पेन हो रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे, कि शायद मन में इतनी कल्पना आती कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा, शायद सिलेक्शन नहीं होगा, और इसकी वजह से सोचते फिर हम जो जीना चाहते नहीं जी पाएंगे। तो ऐसे में मेरे भैया ने ज्यादातर मुझे यही समझाया, मेरे पेरेंट्स ने यही समझाया, थोड़ा टाइम और ले ले, कोई बात नहीं, ये नहीं तो और विकल्प देखेंगे हम। तो वहां पे आपको ये करना है, देखिए आपके बच्चे अगर अपने काम अच्छे से करें ना, उन्हें खुद से डर रहता है कि हम क्या इस काम में सफल होंगे कि नहीं होंगे। डर मतलब इसलिए रहता है क्योंकि वो भी तो वैसे जीवन शैली को जीने के लिए उत्सुक है ना, उनके
0: जी
1: ऊपर भी तो वही रहता है कि हम भी एक जो याद करने का एग्जाम का पैटर्न, इस चक्कर से वो भी तो बाहर आना चाहते हैं।
0: जी जी
1: तो आपको यहाँ पे रोकना टोकना नहीं है, उन्हें ये नहीं बताना कि आपकी शादी की उम्र ये

0: है वो है, आपको बस ये करना है कि उन्हें बोलो कि हम तुम्हारे साथ है, ठीक है यहाँ पर इस परीक्षा में आपके जो भी समय ने साथ नहीं दिया, आपका शायद किसी गलती की वजह से ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन आप में सामर्थ्य कम नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य तो देखो सब में होता है, और हो सकता है वो दिन आपके लिए अच्छा ना हो, कुछ घटनाएं होती है जो प्रभावित करती है, तो ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों को पूरा सहयोग ही करना
1: जी
0: है।
1: पूनम जी, आपका हमें समय देने के लिए और हमारे श्रोताओं को इतनी प्रेरणादायक बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साबित कर दिया अगर इरादे पक्के हों तो बेटियां आसमान भी छू सकती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

कार्यक्रम युवा उमंग में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नारी सशक्तिकरण पर, विशेष बातचीत पूनम फीचर के साथ।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसाना सेती।

0: खेती किसाना सेती कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइया ने अपना भाई नरेंद्र कौशिक की
1: और अपनी बाण अनिता धोन की राम राम।
0: और अनिता देख आजकल आप देखने लग रहे हैं खेती के साथ साथ जब तक हम सहायक धंधा पे काम नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे।
1: एक बात और आ जाए नरेंद्र जो अपने युवा भाई हैं या अपने बालक हैं जो आज अपनी शिक्षा पूरी करके कोई ना कोई रोजगार ढूंढने की कोशिश करने लग रहे हैं, बिनु सोचा इतनी पढ़ाई करके खाली बैठना भी नहीं।

है, दो आमदनी, दो पीछे की आमदनी हो जाए तो कितना बढ़िया है। तो भाई कई बार उनकी जो शिक्षा के मन मुताबिक उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाती और उनका मन भी नहीं लगता। कई बार आपने देखा है कि अच्छे पढ़े पढ़े आपने देखे इंजीनियरिंग है, अच्छे अच्छे आईटी तो लिख रहे बालक हैं भाई, नौकरी भी उन्हें करी है, लेकिन बाद में उन्हें अपना मन बनाया कि क्यों ना हम

0: देखा कि युवा बालक है वो उस तले करना चाहे है, करोड़ों की जो उनकी तनख्वाह है उस पर वो ठोकर मार के, हमने देखा है कि ऐसे ऐसे युवा आज मतलब पशुपालन में है, डेयरी पालन में है, कोई मुर्गी पालन कर रहा है, और वो क्या जुड़ रहे कि वो प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं।
1: बिल्कुल अनिता, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। देखो प्रकृति के नजदीक और जब अपने गांव की मिट्टी की खुशबू में अगर आदमी काम करेगा,
0: हाँ।
1: और जब आदमी अपने गांव का विकास करे है तो उसने बड़ा अच्छा लगेगा।
0: हाँ।
1: एक तो अपने घर को छोड़ना पड़े, आज हम देखने लग रहे हैं हर आदमी ने शहर की तरफ भागने लग रहा है। तो आप अगर ये सहायक धंधे अपने गाँव में ही कर लें और आपको अच्छी उस चीज की ट्रेनिंग हो, सही ज्ञान हो,
0: हाँ।
1: तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सके हैं। आज के टाइम में चाहे पोल्ट्री की बात है, चाहे बकरी की है, मछली पालन की है, आज बहुत बढ़िया तरीके से किसान भाई ने एक अच्छा लाभ कमा सके। और कई बार तो अनिता जी मैं देखने लग रहा हूँ साइड बिजनेस खेती के साथ साथ खर्चा भी कमा हुआ है और लोग है ना कई कई लाख रुपये कमाने लग रहे हैं।
0: ये तो है नरेंद्र भाई,
1: बिल्कुल, लेकिन आदमी की सोच को पर निर्भर करे है कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, कैसे ली, आपने बाजार का मार्केटिंग का पूरा ज्ञान है कि नहीं है। तुम तो किसान भाइयों ने यह कहेंगे कि आप हर चीज के ऊपर पूरा मन बना के उसकी ट्रेनिंग लेके सही ज्ञान लेके आप अगर काम करेंगे ना तो आप अच्छा मुनाफा कमा सके और अपने गांव का बहुत अच्छी तरीके से विकास कर सके।
0: और नरेंद्र ये भी देखे, देखो ज्ञान के बिना तो सारी चीज अधूरी है, चाहे वह खेती बाड़ी ला ले या फिर आप ये इस तरह के बता रहे हो पोल्ट्री फार्म है या फिर बकरी पालन कोई भी है, अगर आप किसी भी क्षेत्र में उतरन लाग रहे हो तो बिना जानकारी अधूरी जानकारी के तो क्या है वो काम आपका सही तरीके से नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात आपने कही है अपने गाँव तो जुड़ कर, और सबसे बड़ी बात है कि खुद की जमीन हो है, अपन अलग तो जमीन भी नहीं खरीदनी, कम लागत लगेगी और आमदनी उस आप बढ़िया ले लेंगे, क्योंकि अगर दूसरे शहर में जाकर आप ये चीज देखा भाई अपना जमीन भी लेनी पड़ेगी, अपना जो माल ले अपना कोई भी डेयरी फार्म है या मुर्गी पालन है या फिर बकरी है तो उन खातर चारा पानी का भी अलग से अपने ऊपर बोझ पड़ेगा, जबकि गांव की गांव में अपनी जमीन होगी, अपनी खेती बाड़ी के सारा लगता है, अपना उनका जो प्रबंधन है वो बढ़िया हो जाएगा।
1: बिल्कुल अनिता सही बात कही है, और साथ साथ में आपने कहा नहीं, देखो गाँव में कम लागत में
0: हाँ।
1: आप शेड बना सके हैं, शहर में बनाओगे एक तो महंगी जमीन पड़ी बात है, दूसरा गाँव में आपके पास जो जमीन है उसी के ऊपर आप बना लो, कम से आप थोड़ा सा कच्चा बना लो, पक्का मकान बनाने की जरूरत को नहीं, बांस है, टाटी है, पुरानी टीम तय बन जाएगा। और 100 मुर्गियों के लिए 15x20 फुट का काफी है, अगर इसके ऊपर काम करेंगे और कच्चा फर्श रखें, ऊपर 2 इंच बालू डाल दो, रोज झाड़ू लगा दो, हवा रोशनी पूरी होनी चाहिए, खर्चा हमें ज्यादा से ज्यादा 25-30 हज़ार में शेड खड़ा हो जाएगा।
0: बहुत बढ़िया बात कही भी। और जिस टाइप आप बात करो थे बकरी पालन है, इस खातर भी है कि गांव की गांव में अपना छोटी थोड़ी ही जगह में आप बढ़िया कमाई कर सके है, आप बकरी ने जो ऊंची जगह पसंद है तो भाई फर्श 2 फुट और ऊंचा बना ले, और लकड़ी का हो या बांस का हो, और सबसे बड़े बात है भाई जब ऊंची उसको बना दिया तो अपना जो मीट बैठ करेंगे गोबर करेंगे वो भी नीचे आकर पड़ेगा। और एक तो बात और देख इसमें भी है कि 12-15 फुट शेड है वो इस पर कितना का जगह 18-20 हज़ार, तो कम लागत में क्योंकि जमीन अपनी है लागत अपनी बहुत कम लगेगी और जो भी उसका ऊपर खर्चा लगेगा वो बहुत कम लगेगा, लेकिन अपने आमदनी उस पर बढ़िया मिल जाएगी।
1: और दूसरा एक और बात है, आपने जो कहा ना भाई अगर आप ऊंचे पर बांधेंगे
0: हाँ।
1: तो ऊपर बकरी सूखी भी रहेगी
0: हाँ।
1: बारिश का पानी भी कम लगेगा, और आपने सही तरीके से कह दिया कि 15x20 का साइड है 18-20 हज़ार में तैयार हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात भी कोई नहीं। शुरुआती दौर पर आप अपने घर वालों के साथ मिलके, और अगर आप बढ़िया तरीके से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, मछली पालन विभाग है, कृषि वैज्ञानिक हैं, इनसे मिलकर के अगर इस तरह के काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सके हैं। इस तरीके से मछली पालन है अनिता वान, बहुत बढ़िया काम है, गांव में देखो तालाब है कई जगह
0: अपने जोड़ है भाई
1: बिल्कुल
0: हाँ।
1: या भाई अपना जोड़ अगर आदमी किराया पर लेना चाहे तो पंचायत भी दे दे है, और या अपने खेत में किसान भाई ने छोटा सा तालाब बना के इसके ऊपर काम कर सके हैं। ऊपर वाली कतला, बीच में रोहू और नीचे मरगल और कॉमन कार्प नाम की जितनी भी वैरायटी है, ये मछली किसान भाई मिश्रित मछली पालन कर सके हैं।
0: आपका कहने का मतलब है एक तालाब में 4 डाल के आप मछली के बीज घेर सके हैं, जो आपने बताया कतला है या फिर रोहू है या मृगल है या कॉमन कार्प है, मतलब एक तालाब में आप कई वैरायटी ले सके जिससे आपने बड़ी आमदनी मिले। सबका खाना अलग अलग है, कोई तो पैदावार भी आपकी दुगनी हो जाएगी इसमें। और इसकी तालाब की गहराई की है भाई 5-6 फुट पानी रखना बहुत जरूरी है, कम पानी में मछली देखो मरण का देखो अंदेशा रहा है, वो भी गर्मी में
1: बिल्कुल।
0: और जब कई बार हो जाए कि काई कोई हो जाए तो उसने भी क्या करें 100 किलो चूना प्रति एकड़ डाल दे।

0: तो वो उसका पानी भी साफ हो जाएगा, जिसमें अपने मछलियां में कोई बीमारी आने का भी अंदेशा नहीं रहेगा, और ऑक्सीजन भी वही सुबह सुबह मछली जो है अपने ऊपर आ जाए तो समझ जाओ भी उसने ऑक्सीजन कम है और थोड़ा पानी बदल दे।
1: बिल्कुल, और इसी तरीके से वह गोबर हफ्ते में दो बार 10 किलो गोबर है प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं, प्राकृतिक खाना बन जाएगा उसका।
0: अच्छा।
1: और उसके उसको खाने को खा के मछली बहुत अच्छी तरीके से बढ़वारण की रहेगा। इसी तरीके से देखो अनीता जी, चाहे अपनी हमें मुर्गी है या उनमें कोई बीमारी लाग जे है, तो उसके लिए भी किसान भाई हफ्ते में एक बार चूना छिड़क दे, और पशु डॉक्टर ते एंडी वैक्सीन भी लगवा सके हैं, सरकारी वैक्सीन फ्री में लगन लग रही है। उसी तरीके बकरी के लिए चारा कांता ले आवा, कई बार किसान भाई कह दे भाई, तो इसके लिए खेत में मेड़ पे नेपियर घास लगा सके हैं, साल भर हरा चारा मिलेगा, बकरी बरसीम जवार भी खा सके है। और इसी तरीके से अगर आपने देखो मछली पालन करे ओड़ा है, तो उसके लिए भाई लागत कम, कमाई पक्की, बैंक के चक्कर काटने की जरूरत को नहीं, और एक बहुत बढ़िया तरीके थे किसान भाई इसके ऊपर काम कर सके हैं। लेकिन बातचीत जारी रखेंगे, उससे पहले एक बार और सुनावांगे भैया ने रागनी।

0: नरेंद्र भाई देखो या तो सुनी रागनी, और आप बात कर रहे थे कि जब तालाब में आप मछली गिरने लग रही, तरह तरह की आपकी उसमें किस्म डाल के अच्छी बढ़िया कमाई के मास, और उसमें क्या है 1 एकड़ में 3 से 4 लाख आप उसमें कमाई कर सके अगर आप बढ़िया तरह उसमें ध्यान देंगे, अच्छी समझदारी तक ज्ञान लाभ की बात करेंगे तो ध्यान देकर जब उस खेती बाड़ी ने करा तो देखो अपना लाभ तो मिला ही मिलेगा।
1: बिल्कुल अनीता, देखो चाहे कोई भी चीज़ हो, आदमी है ना, अगर सही तरीके से काम करे है, मौसम का हिसाब किताब लगा के ना तरीके से काम करना लग रहा है, पूरी आपने जानकारी ले रखी है कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा या बैंक के द्वारा, अगर लोन भी लेना है तो किसान भाई उसके लिए काम कर सकें। साथ साथ में है ना, आप गाँव में जैसे स्वयं सहायता समूह है, बहनों का समूह है, उनको आप साथ में मिला सकें। तो कहने का तात्पर्य है कि खेती के साथ साथ हमने प्राकृतिक चीज़ों को की तरफ भी दोबारा जाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो आपने है ना मुर्गी पालन करे, उसकी जो बीट हो ना, उसकी बहुत बढ़िया खाद बन लग रही है, गमले में डाली जावे हैं, तो आप है ना उसके साथ आम के आम और गुठली के दाम, कहने का मतलब उसी तरीके से बकरी है, बकरी साल में है ना मैं 2 बार ब्याह है, तो अगर आप बकरी के बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से आगे बढ़वार करेंगे, एक बार आपने 10 20 50 बकरियां से काम शुरू कर सकें, और एक बहुत अच्छी तरीके से एक बार आप है ना बड़े फार्म की तरफ बढ़ सकें।
0: और खास बात यह है देख नरेंद्र भाई, कोई काम शुरू कर लिया उस

0: में आपा ने साफ सफाई का बहुत रखना पड़ेगा, चाहे वह मुर्गी पालन लगा ले, चाहे आप भेड़ बकरी का पालन लगा। देखो साफ सफाई, अगर अगर आप अच्छे से उसकी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो देखो भाई कोई ना कोई बीमारी पशुओं में आ जाए। तो उसमें भी क्या करा, समय से पहले भाई जो भी टीकाकरण है या आपकी जो भी डॉक्टर इसे पशुपालन विभाग से जो भी डॉक्टर है या वो है, तो उस उनते बार बार सलाह ले लें और बार बार अपनी उनकी जांच पड़ताल करवाते रहे, ताकि समय से पहले आप अगर आप देखभाल कर लेंगे तो आगे जाकर आप ना कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
1: और इसके साथ साथ देखो आपने बाजार के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्यों आज इंटरनेट का जमाना है। हम पूरे दुनिया का घर बैठ के अभी पता कर सके हैं कौन सी चीज का भाव कहाँ मिलेगा, कौन कैसे मिल सके है, या भाई आपने जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसमें लेके जाना तो कैसे लेके जाना, तो मछली मारने लेके जाना है।

0: अपनी उनकी जांच पड़ताल करवाते रहे, ताकि समय से पहले आप अगर आप देखभाल कर लेंगे तो आगे जाकर आप ना कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
1: और इसके साथ साथ देखो आप इन्हें बाजार के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है।
0: हाँ।
1: हम पूरे दुनिया का घर बैठ के अभी पता कर सके हैं कौन सी चीज का भाव कहाँ मिलेगा, कौन कैसे मिल सके है, या भाई आप इन्हें जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसमें लेके जाना तो कैसे लेके जाना, तो मछली मारने लेके जाना है।

0: पहले कहा करते थे नौकरी खतरा पे बाहर जान लाग रहे, आज आप अपने गांव में नौकरी पैदा कर सके हैं और गांव में नौकरी जदे कर सके हैं जद आपके अंदर जज्बा हो,
1: जज्बा
0: और भाई उस जज्बे के लिए ना अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा ज्ञान, आपके साथ कोई प्रगतिशील किसान है उसकी आप सहायता ले सके हैं, बैंकों की सहायता ले सकते हैं, स्वयं सहायता समूह की ले सकते हैं, या आपके आस पड़ोस गाँव में या जिला अधिकारी जो हमारे बैठे हैं वो भी इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे किस गाँव में कौन सा काम है, कैसे चल रहा है, और टपका सिंचाई की बात है और सब्जियों की बात है, हम है ना अनेकों काम है ना घर बैठे आज आसानी तरीके से अपने खेत को पर कर सके हैं, जमीन हमारे पास है, सब कुछ है, बस हमारे अंदर ना थोड़ा जज्बे की जरूरत है, और उस जज्बे को जगा के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अनिता हम है बिल्कुल देश के लिए एक अच्छा योगदान दे सकेंगे और एक अच्छी कमाई कर सकेंगे।
1: सबसे बड़ी बात है कि अपने जो आसपास है अपना हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है वो बहुत उम्मीदा का सारा है, बहुत उम्मीदा का पिटारा है,
0: बिल्कुल
1: अगर आप कुछ भी करना चाहो ना हर समय आपके लिए तैयार है, आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी वहां जाकर ले सके हैं, बढ़िया चीज मतलब सीख सके हैं, जैसे खूब उत्पादन है, अचार आम जेली इनकी भी बाई ट्रेनिंग दी जा है, मतलब छोटी छोटी से मधुमक्खी पालन है किस तरह करना चाहिए, आप करण तो लाग जाओ लेकिन आपको पता नहीं कि किस तरह उस तरीके करना है, तो वो आपने हर चीज की जानकारी आपने उड़ मिलेगी।
0: अनिता कई बार आप बाहर जावा तो रोड़ा को लिखा पा हुआ है कि जो अपनी जो मधुमक्खी थी देसी मधुमक्खी थी उनकी बहुत कमी होने लग रही है और उसके शहद की इतनी डिमांड है दुनिया में, आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सके हैं क्योंकि दवाओं में सबसे ज्यादा देसी मक्खियों का शहद प्रयोग हुआ है, लेकिन हमारी जो देसी मक्खियां हैं ना खत्म होने लग रही है, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा बिना पेस्टिसाइड का काम करें और प्राकृतिक खेती की तरफ आए, खूब फूलों की खेती करें, उसके साथ उन चीजों को रखेंगे तो हम उनको बचा सके। साथ में जैसे गर्मी का मौसम है पानी की बड़ी जरूरत पड़े है और गर्मी के मौसम में देखेंगे फूल तो हैं खूब कई बार लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते, जहां पर भी आप देखो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं वहां पर एक तो पानी बहुत बढ़िया जरूर होना चाहिए आसपास, साथ साथ में आप उसके आसपास कोई भी कीटनाशक दवाई ना छिड़कें क्योंकि अगर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया हुए के ऊपर वो बैठेंगी तो भाई देखो वो मरेंगी और मरेंगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम मधुमक्खी जो देसी मधुमक्खी है हम ये सोचेंगे कोई देसी मधुमक्खी होया भी करती।
1: ये तो है नरेंद्र भाई, देखो आप अपने किसान भाई हैं या फिर जमींदार हैं और जगह जगह बताया भी जा रहा है कि अपने जो मित्र कीट हैं उनने बचाना बहुत जरूरी है, उनने में एक अपने या मधुमक्खी है क्योंकि वो इतना अपना दवाई रसायन इतना गेरा हाँ कि वह बेचारी फूलना पता रस लेने जा है लेकिन वह है कि वो रसायन का प्रयोग करके वह कितनी अपना कड़पा पहले आप छोटे छोटे लकड़िया के झुंड बनसटिया के झुंड पड़े रहा करते भाई उन अपना शहद पा जाया करता लेकिन ईब कड़पा है ईब तो अपना टोए भी कौन पा अगर दवाई के रूप में भी अपना यो प्रयोग करना तो भाई मन ना तो लगता नहीं कि अपना जंगल जंगल का कोई रास्ता देखना पड़ेगा टोना पड़ेगा, पहले तो अपना घर घर में छाते लागे
0: बिल्कुल पा कर दे और आप देखा करते अपने इशारे में ला लिया रेडियो स्टेशन तमाने फुहरा चौक की तरफ जाया करते अनिता इसमें इतने लंबे पेड़ थे इनके सबके ऊपर छत्ते लगे देसी भी दूसरे भी तो वो क्या कारण था, उनको सारी चीजें सुविधा मिली हुई थी लेकिन आज है ना हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है उसका कारण भी सबसे ज्यादा मधुमक्खियों के ऊपर पड़ा है, तो हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों को कि एक तो अपने पर्यावरण को सही रखें साथ साथ अपने स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखेंगे तो आप है ना आगे बढ़ पाएंगे और कृषि के अंदर किसान भाइयों हमें स्वयं खुद कूदना पड़ेगा, हम दूसरे के भरोसे ना रहें, अच्छी ट्रेनिंग लेकर के गांव के युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है, आज दुनिया में ऐसी ऐसी तकनीक हैं जो हम अपने गांव में प्रयोग कर सके हैं घर बैठे, आज इन्हें आप किसी भी माध्यम से आप घर पर देख के उन चीजों को या अपने जो कृषि वैज्ञानिक हैं चाहे वो देश के किसी भी यूनिवर्सिटीज में भी हों आप उनको बुला सकते हैं और इन चीजों के ऊपर आज का टाइम अनिता बहुत जरूरत है, अगर आपने इस देश की जीडीपी में अच्छा योगदान देना है किसानों का सहयोग राष्ट्र समर्पित करना है तो जरूरी है क्योंकि लोग कम है कि 60% का लगभग 60-70% लोग खेती से जुड़े हुए लेकिन इतनी आमदनी नहीं,
1: ये तो है नरेंद्र भाई आप देखने लग रहे हैं कि कितना बदलाव अपन को क्या करते सेब और सेब तो ब्रेप की जगह पर होगा लेकिन आपने देखा है अपना राजस्थान में भी सेब होने लग रहे हैं खजूर भी होने लग रहे तो ये क्या है कि बदलाव तो है क्योंकि पहले हम इतने जागरूक नहीं थे हमें पता नहीं था और ऊपर तो अपने जो कृषि वैज्ञानिक है उनने भी नई नई खोज करी नए नए तरीके काटे कि गर्मी के क्षेत्र में भी जलवायु गर्म जलवायु में भी आप सेब और ये चीज देखने लग रहे हैं जो कभी बर्फ के बीच में होया करते, तो आप बदलाव देखो कितना लग रहा है। बदलाव के साथ आज हमने चलना पड़ेगा। जो जागरूक किसान है वो तो आज भाई जो अपनी परंपरागत खेती थी और इब भी है जो अपना धान दान के बाद गेहूं

0: इस तरह की जो अपनी धरती का जो स्वास्थ्य बिगड़न लग रहा है उसमें बदलाव लाना चाहे हैं, तरह तरह की खेती उसमें करना चाहे हैं, बाग तरह तरह के लगाना चाहे हैं और अच्छी आमदनी भी वाले हुए हैं।
1: बिल्कुल अनीता, देखो आमदनी भी भाई लेंगे और सारी पूरी जानकारी भी आपने दे दी। हम तो चाहूंगी रेडियो इसी तरीके से सुनते रहें, लेकिन ये घड़े सारा करने लग रही है अपने भाई नरेंद्र कौशिक ने
0: और अपनी बाण अनीता दुवन ने दे इजाजत
1: सारे बाण भाई ने। राम राम,
0: राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सेती। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर।

करता हूँ याद दिला दें कि आज रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। और इस कार्यक्रम में यदि आप भेजना चाहते हैं अपने मैसेजेस तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272।

0: मारे गांव कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने एक बार फिर अपना भाई नरेंद्र कौशिक की तरफ
1: और अपनी बाण अनीता दोन की तरफ था,
0: राम राम। अरे भाइयों देखो, सुखी नहीं जान देंगे, मनोरंजन भी करावांगे, लेकिन ज्ञान लाभ की बात बतानी भी जरूरी है, क्योंकि हम गांव तो रहा है और भाई गांव
1: माटी तो जुड़ रहे हैं। हाँ, नरेंद्र भाई
0: बिल्कुल। और जब अपनी माटी की बात आवे तो आदमी के है ना रोंगटे खड़े हो जाए हैं, वो पुरानी बातें याद आ जाए हैं। देखो कितनी सवस हवा आया करती,
1: क्यों ना वह दिन एक बार फिर क्यों ना लौट का आ जाए।
0: बिल्कुल, पेड़ा के नीचे बुजुर्ग बैठा करते, नीमा के पेड़ा के नीचे बैठा करते, हरियाली होया करते,
1: गुड़ रोटी खाया करते, ऊपर तो लस्सी पिया करते नरेंद्र भाई, और बीमारियां तो दूर रहा करते। आज भाई छाट छाट के तो चीज महंगी महंगी चीज खावा और फिर अस्पताल के आप चक्कर काटा है।
0: अनिता देखो, उसके पास स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर तो ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा फसल तभी बढ़िया होगी जब किसान का शरीर भी तंदुरुस्त होगा, घर भी साफ होगा तो बीमारी घर तो दूर रहेगी। और बरसात का मौसम है, और इस बरसात के मौसम में आप ये देखा कि मच्छर मक्खी इतने हो जाए हैं और जगह जगह लोग हैं बुखार ते ग्रसित हो जाए। तो हम ये कहेंगे, एक तो जो घर में आपने कूलर वा रखे हैं, या आपका कोई भी है ना गमला है, कोई और चीज है, उसमें हमें पानी बिल्कुल ना खड़े होने दें, और कूलर में कम से कम हर सप्ताह में एक बार उसकी सफाई कर दें, बिल्कुल सुखा दें 10-15 मिनट के लिए। हम तो ये कहूंगे स्वच्छता है ना तो आपके लिए रामबाण है, आप बिल्कुल बीमार नहीं होगे। चाहे पीने के पानी की बात है अनिता, तो गांव हर गांव की सफाई अब इन्हें रखनी पड़ेगी।
1: और बात आपने जब कूलर कलर की करे भाई, किते किते गाल भी हैं जड़ा खड्डे हो रहे हैं, ओडर ईंट रोड़े गेर का उसने भर दे, ताकि जब बरसात का मौसम हो तो आपका उस खड्डे में पानी इकट्ठा ना। और वही बात है भाई, छोटे छोटी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आपने सोचा नहीं टाल दिया ये तो तड़का सूख जाएगा, तड़का कौन ही सूख है, तड़का बरसा भी गा तो उसमें फिर पानी खड़ा होगा, ओढ़े तो वह मच्छर पनपका, अपने स्वास्थ्य भी अपने डंगर डोर है उनके भी स्वास्थ्य पर असर करेंगे। क्योंकि भाई देखो, आपा तो अपना कूलर आगस हो गए, एसी तड़स हो गए, आप मच्छर तो बच गए, लेकिन अपने जो डंगर डोर है, जो दूध उत्पादन की अपनी एक बड़ी वो साधन है, अगर भाई उन खावांगे तो भी मुश्किल, क्योंकि फिर वह दूध तो नट जाएंगे, अपना दूध लस्सी करे तो मिलेगा। फिर आ जाए अपनी भाई कुरड़ी करड़ी है, इनका दौरा भी खड्डे खूब आ जाए, कई भाई खाद हो तो काट ले हैं, और कुरड़ी ने न्यू करना वो खड्डा खाली छोड़ दे भाई, उसने भी कोशिश करा कि उसने आट दे ना, तो अपना न्यू करा ध्यान रखा है उसमें पानी ना खड़ा हुआ है। क्योंकि देखो ये छोटी छोटी जब आप ध्यान रखेंगे तो जब बढ़िया काम रहेगा। और दूसरे आपने देखे नरेंद्र भाई, अपने जोड़ हैं जो उनके किनारे किनारे के कर देंगे, नरेंद्र भाई अपनी बाण हरकत मड़ा हक कर ले हैं, देखो नहीं होनी चाहिए बात, ओड़ा कुरड़ी के ढेर ला दे हैं, इब अपने डांगर डोर जोड़ में पानी पीने जा भाई, एक तो मक्खी मच्छर का डर, दूसरा जो अड़ंगा बह का अपने जोड़ में जाओगा, अपने डांगर उसमें तो पानी पी के आओगे, तो वो एक तो डांगर का स्वास्थ्य खराब, दूसरा आप दूध लेवांगे उससे अपना भी स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। और दूसरी बात आ जाए है कि अपनी जो खान पीन की चीज है, चौमास में अपना कया करे ना भाई, चौमास में तो बुरा लो जाए मक्खी मच्छरा का, तो भाई चाहे दूध है साग सब्जी है उसने ढककर रख।
0: बिल्कुल भाई, देखो तो पीने के पानी का विशेष ध्यान रखना, जो आपने कहा हमेशा पानी है ना बारिश का टाइम में, जब देखो मानसून आने वाली हो रही है, किसी टाइम भी आस्क है, तो भाई हम तो किसान भाइयों ने या दूसरे जितने भी हमारे श्रोता है उन्हें ये कहना चाहेंगे, आप हमेशा हमें इस बरसात के मौसम में या तो फिल्टर का पानी पीवे, उबाल के पानी पीवे,
1: उबाल के पीवे,
0: बरसात में तालाब कुएं का पानी खराब हो जाए, कई बार आप देखा तो उसके ऊपर भी आपने विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह शौचालय जो अपने हैं, खुले में शौच बिल्कुल मत करें, घर में टॉयलेट है तो रोज फिनाइल डाल लो, नहीं तो स्वच्छ पानी उसने साफ करें। और सरकार देखो इस चीज के लिए आपको पैसा भी दे रही है स्वच्छता के लिए, हम तो ये कहेंगे कि आप बिल्कुल सोच बाहर ना जाएं कोई भी व्यक्ति। देखो इसके ऊपर काम तो सरकार भी खूब कर रही है, लोग भी धीरे धीरे

0: इसके ऊपर काम करना है, लेकिन फिर भी एक आध भाई मान लो गुस्ताखी करे है,
1: हाँ,
0: तो हम इन तब ये आजोड़ के भाई प्रार्थनाएं कर सके कि आप इस तरह का काम ना करें। और जो कूड़ा करकट की जो आपने बात करी घर में है या आपके तालाब के आसपास है, कई बार भाई क्या करेंगे घर में तो बिल्कुल साफ रखेंगे और गली में फेंक देंगे, तो एक गड्ढा खोद के ना आप उसने दबा लें तो उससे एक तो कंपोस्ट खाद बन जाएगी, मच्छर भी पैदा को नहीं होंगे। साथ में भाई हाथ धोना, खाना जब भी खावे आप कभी भी, तो हम तो ये कहें या सोच जाके आवे तो कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोना जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथों में जो बैक्टीरिया हुए ना वो बड़ा नुकसान करें। तो अनिता बहन साफ सफाई का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। और इसी तरीके से देखो ये जो मौसम है इसमें लू तय बचाना भी किसान भाइयों ने हम जरूर कहेंगे कि जब भी आप घर तक जावे तो आप अपने सिर के ऊपर गमछा है, टोपी है, कोई कपड़ा है, कुछ भी, और 12 से 4 बजे तक तो काम में ना करो।
1: सबसे बड़ी बात भाई सूती कपड़े का प्रयोग करें, क्योंकि देखो स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य है तो भाई सब कुछ है। क्या करें कि पहले अपनी शरीर ने देखना है, तो शरीर ने आप अपने स्वास्थ्य ने बचा कर रखेंगे तो आप सबका मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान रख सके हैं। अगर आप पर बीमार पड़ गए तो फिर वही बात है, आप बीमार पड़ गए तो रहना क्यों कर संभाल पाओगे, क्योंकि जो वातावरण है वो हमारा साफ सुथरा रहेगा तो अपना किसान है या आपा है वो आपा भी स्वस्थ रहेंगे, अपना खुशहाल किसान रहोगा तो खेता में समृद्धि भी आवेगी।
0: और भाई देखो गामा महीने आप देखा कई बार है ना गर्मी के मौसम में कई भाई है ना पानी कौन पीवे, उन्होंने बेरा भाई अगर ज्यादा पसीना होगा तो आपके शरीर में पानी की कमी आ जाए, उस अवस्था में आपने ORS साथ रखो, 1 लीटर पानी, 6 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक घोल के हमेशा साथ हर आदमी ने रखना चाहिए, चाहे अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कई बार उल्टी दस्त हो जाए हैं, उस अवस्था में ये चीजें देनी बहुत जरूरी है। उसी तरीके से कीटनाशक स्प्रे करते समय मास्क है, दस्ताने हैं, पूरे कपड़े पहनो, जहर सीधा फेफड़े पर जाओ है, नहा लो स्प्रे के बाद, जब भी आप करेंगे कहीं सीधी सी बात नहाना धोना भी जरूरी, वही साफ सफाई वाली बात है। खाने में हरा साग है, दूध दही है, गुड़ खाओ, ताकत बनी रहेगी। और बीमारी के लक्षण कई बार आप देखते हैं कि जब ये गर्मी का मौसम आवे ज्यादा तो इसमें तेज बुखार, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और कई बार तो बहुत बुरा हाल हो जाए, तो आप अपने नजदीकी PHC या सरकारी अस्पताल में जाओ और जिसमें सरकार के द्वारा इलाज फ्री किया जा रहा है, बरसात में मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड ज्यादा हो जाए, मच्छरदानी लगा के रखो, घर के आसपास पानी इकट्ठा मत होने दो।
1: और नरेंद्र भाई देखो आप बातचीत तो करन लग रहे हैं, चर्चा लंबी भी चलेगी, लेकिन बीच बीच में जो स्वास्थ्य है ना उस खातर मनोरंजन भी बहुत बढ़िया हो, जब मीठी मीठी आप रागनी सुनवाओगे ना तो आधी बीमारी तो ये खत्म हो जाएगी, तो ला लिया हाँ जोटा
0: बिल्कुल, तो सुनेंगे रागनी।

0: अनिता बानियो तो देखो आपने है ना कसूता मनोरंजन का तड़का लुआ दिया, और जब मनोरंजन का तड़का लाग गए है और दाल डोकी के ऊपर बाण भाई लाग रहे हैं, तो उनने देखो एक न्यारा मजा। और यहाँ तक कि जो अपने पशु दूध देव है ना उनने भी अड़का अड़का जब है ना म्यूजिक बाजे है, चाहे वो रागनी की
1: आपने
0: बात हो
1: देखे
0: चाहे कोई
1: नहीं
0: दूसरा
1: कई
0: हो।
1: डेयरिया में
0: हाँ
1: अपने जो बड़ी लेवल पर अपने जो भाई हैं या बहन है डेयरी कर रही हैं, आपने देखा कि जो डांगर है उनके बीच में आप वो मीठी मीठी धुन सी बजाए जागे, तो डांगर नु कहे कि उसके दूध पे भी बहुत फर्क पड़ा है, डांगर भी वो है बड़ा खुश खुश रहे
0: बिल्कुल
1: है ना। और आप बात कर रहे थे कि अपने किसान भाइयों का स्वास्थ्य, भाई कई बार तो किसान भाई देखे धान लागन लाग रहे हैं, कितने पानी का आ जा है, कितने पानी खेत में भरना है, तो के करे है ये मौसम ही सब ऊंडा है कि गर्मी भी कसूती लगा है एकदम, तो पानी पीना जी करे, तो भाई न्यू करे भाई अपना घड़ा रखा कोरा और उस पर बोरी बारी लपेट का उड़े, पेट के नीचे दाब ले उसने ताकि पानी ठंडा रहे, भाई फ्रीज फ्रीज का पानी तो बचा करो एकदम, तो इतनी गर्मी में ताती लू लू में आप जाओ हो और सीधे आप एसी तले बड़ो हो और फिर फ्रीज का भाई ऊपर तक पानी, तो वो देखो आपके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। तो उससे बचन खातर भाई सबसे बड़ा अपना माटी, माटी तो मिल रहे हैं तो माटी में है, तो माटी का अपना घड़ा है उसमें अपना पानी रखा है, ताजा ताजा ठंडा ठंडा पानी उसका पीवा, तो देखो उसका न्यारा ही मजा। हाँ लगा है कोई बात नहीं, नू लगा है ताता ताता, लेकिन नू देखो कि आपका स्वास्थ्य कितना बढ़िया रहेगा, आप बीमारियां तो बचे रहोगे।
0: अनिता बाणा पे पुराने टाइम में अपने देखा करते जो अपने बूढ़े बुजुर्ग होया करते ना वो क्या क्या करते, कोई मान ले गिलास में पानी डाल लिया
1: हाँ
0: ना तो ज्यादा गर्म खाया करते ना ज्यादा ठंडा, वो लगा के देखा करते शरीर के तासीर के अनुसार।
1: तासीर के
0: तो हम तो
1: अनुसार
0: ये कहूँ भाई शरीर के तासीर के अनुसार अगर आप पानी पियोगे या कोई भी चीज खाओ पियोगे तो आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। हमने दोबारा से उन्हीं प्राकृतिक चीजों की तरफ आने की जरूरत है।
1: नरेंद्र भाई देखो भाईचारे की तो बहुत सख्त जरूर है, चाहे वो किसान खेती हो चाहे अपना कोई भी काम हो समाज में, अगर आज आपका बड़ा या छोटा भाई आपका धोरे खड़ा है कंधा का कंधा ला कर खड़ा है, शाबाशी देने तैयार है, तू काम तो कर मैं तेरा साथ हूँ, डरने की जरूरत है, देखो देखो उसकी तो मिसाल है भाई, उसकी तो बात तैयारी है।
0: बिल्कुल उसी तरीके से भाई सवस्था के ऊपर बात आवे जब हमने अपने भाइयों के साथ मिलके ने, और चाहे बाण हो चाहे हमारी चाची ताई हो सब ने मिलके ना अगर हम सवस्था की तरफ ध्यान देवेंगे और इसी तरीके से जो मौसम का जो बदलाव आवा उस मौसम का ध्यान रखेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे।
1: और साथ साथ आप मनोरंजन भी करते रहेंगे तो उसकी तो बात तैयारी है।
0: तो सुनेंगे रागनी।

0: अनिता बाण, ये तो देखो सुनी रागनी, और रागनी का मजा भाई और बाण पूरा लेन लाग रहे हैं, लेकिन है ना घड़ी साथ साथ में इशारा भी करने लाग रही है। लेकिन उससे पहले हम भैया ने एक बार फिर कहेंगे कि आप है ना स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान रखें, स्वच्छ मन होगा तो तभी आप स्वच्छता के साथ काम कर सकें
1: आपका तन भी स्वस्थ रहेगा,
0: और
1: आप
0: मन भी।
1: बीमारियां तो दूर होगे भाई। ये जो पोटले बंद बंद कर लिया ना डॉक्टर था भाई, वो कड़वी कड़वी खावा, इस तो था अपना मीठा मीठा स्वस्थ रखा, बढ़िया बढ़िया रहा, खुश रहा, भाईचारा था मेल मिलाप कर कर रखा, तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और आप स्वस्थ बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है।
0: अरे लेकिन घड़ी देखो, घड़ी भी सारा करने, समय की भी नजाकत का पेन ध्यान रखना पड़ा, तो भी अपने भाई नरेंद्र कौशिक ने
1: और अपनी बहन अनीता दुआ ने दे इजाजत,
0: सारे बाण भैया ने राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्हारे गांव। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.3 MHz पर। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

हैं आकाशवाणी के हिसार केंद्र से एफएम बैंड 102.3 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आकाशवाणी हिसार से आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम। आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी हिसार एफ एम 102.3 MHz पर। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म नायक से।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.3 MHz पर। कार्यक्रम खुला आकाश में आज आइए सुनते हैं हरियाणा के गलियारे से आज बात कपिल देव की। कपिल देव रामलाल निखंज, जी हाँ यही उनका पूरा नाम, भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों में उनकी गणना होती है। वे भारतीय क्रिकेट के कप्तान के पद पर रह चुके हैं। 1983 के क्रिकेट विश्व कप में वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उन्हीं के नेतृत्व में टीम ने विश्व कप जीतने का गौरव प्राप्त किया था पहली बार। वे विजडन द्वारा वर्ष 2002 में सदी के भारतीय क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी चुने गए थे और वे 10 माह के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशिक्षक भी रह चुके हैं। कपिल देव का जन्म चंडीगढ़ में हुआ। उनका विवाह हुआ रोमी भाटिया से और उनकी एक बेटी है जिसका नाम है आमिया देव। आज बात कपिल देव की, लेकिन इस गीत के बाद।

कार्यक्रम हरियाणा के गलियारों से में हम बात करें आज कपिल देव की, और टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट यानी 434 विकेट लेने का पूर्व वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कपिल देव के नाम रहा बहुत समय तक। वनडे में नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी उन्होंने खेली थी 175 रन की, जिससे कि उन्होंने 1983 का जो विश्व कप है वो हमें जितवाया था। टेस्ट क्रिकेट में 5,000 से ज्यादा रन बनाने वाले और 400 से अधिक विकेट लेने वाले इतिहास के एकमात्र ऑलराउंडर हैं वो, जो रिकॉर्ड आज भी उनके नाम पर है। 1994 में उन्होंने रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा था। वह 434 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे, जो कि बाद में 2000 में कर्टनी वॉल्श, जो कि वेस्टइंडीज के प्लेयर थे, उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। यह काफी लंबे समय तक नंबर 5 या उससे नीचे बल्लेबाजी करने वाले किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रहा। 131 टेस्ट मैचों में 434 विकेट चटकाने के साथ साथ उन्होंने 31.05 की औसत से 5,248 रन भी बनाए। वह टेस्ट इतिहास के इकलौते खिलाड़ी हैं जिनके नाम 5,000 रन और 400 विकेट का डबल रिकॉर्ड दर्ज है। साथ ही एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन और विकेट, यानी 1979 में उन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 600 से ज्यादा रन और 70 से ज्यादा विकेट लेने का एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया था।

कार्यक्रम खुला आकाश में भी आप सुन रहे थे हरियाणा के गलियारे से। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या के लिए आपके लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। कल 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टर ले स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंड से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का

0: ये कानपुर से काबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है वो सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। एक रिपोर्ट।
2: बीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन से बढ़कर 327 रुपए 40 पैसे प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में बीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, बीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जन भागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था।

0: इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुंच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
1: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा वीथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
4: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकार

0: अधिकारों को प्रोत्साहन दिया और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एक रूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: संघर्ष फिल्म का ही गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम का गाया हुआ, समीर ने गीत लिखा था और जतिन ललित ने संगीत से सवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आपके लिए कार्यक्रम का अगला गाना साया फिल्म से, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसे संगीत से सवारा है MM क्रीम ने।

आइए अब सुनते हैं खिलाड़ी फिल्म का गाना अभिजीत और अलका याग्निक का गाया हुआ। अनवर सागर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है जतिन ललित ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली फिल्म का गाना, जिसे लिखा है गुलजार ने, शुरू में पिरोया है शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झंकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे संवरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी मां।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे। नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरुड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

श्री अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुशनसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.3 MHz पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 9729253272। तो उठाइए अपने फोन, हमें मैसेज भेजिए और जो भी आप गीत सुनना चाहते हैं बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका नाम जरूर पढ़ा जाए आज के इस शो में और आपके पसंद के गीत आप सुनेंगे अगले एक घंटे तक मेरे यानी आनंद के साथ। साथ ही एक और खास दिन है आज, आज है डॉक्टर्स डे, आज है CAs डे। तो क्यों ना ढूंढा जाए बॉलीवुड में उन डॉक्टर्स को, उन CAs को जिन्होंने अपने करियर को छोड़कर या करियर के साथ साथ बॉलीवुड को ज्वाइन किया, हमें बेहतरीन फिल्में दी। तो आज इस शो में हम बातें करेंगे उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, उन डॉक्टर्स की जिन्होंने बॉलीवुड को ज्वाइन किया, हमें बेहतरीन फिल्में दी। यदि आपको भी ऐसे किसी डॉक्टर के बारे में मालूम है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आपका मैसेज जरूर पढ़ा जाएगा, आपका संदेश भी जरूर पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी तो मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं आपके नामों की, तो आपके इंतजारों खत्म करते हैं। हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहला मैसेज जो है वो हम पढ़ रहे हैं गाँव जाखोद राजस्थान से। शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा हैं भेजने वाले। अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुडा, दयावंती हुडा, नरेंद्र, अंकिता, सोमू और तानिया हुडा ने हमें मैसेज भेजा है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव सायना और निवान शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना MP से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने भी हमें मैसेज भेजा है। गांव चूली देशवाली जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, दरौली से रघुबीर, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और राम निवास भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणदीप, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप सिंह, वेकम दमन और अभिजोत ने भी इस वक्त हमें ट्यूनिंग किया हुआ है। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा ने भी हमें मैसेज किया है। अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से जुड़ गए हैं हमारे साथ। फौजियों के गांव बांडा हेड़ी से मास्टर जगदीश सिंह जांगड़ा, सतबीर हठी, कृष्ण मुबारक और सुरेंद्र ने हमें मैसेज किया है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिराही, मेहराज जहां और उनका परिवार आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से जुड़ गया है हमारे साथ। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है सादुल शहर जिला गंगा नगर राजस्थान से। राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ हैं लिखने वाले। बड़ंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर

और पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी और ऋतिक ने हमें मैसेज भेजा है। बस एक मैसेज और लेंगे अगले गाने से पहले, यानी पहले गाने से पहले, जो कि हमें भेजा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि और दीक्षा वाघमारे, साथ ही उनके शशांक वाघमारे। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

स्वागत है आपका आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आनंद, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। आज है डॉक्टर्स डे और मैंने आपको कहा था कि आज हम बात करेंगे उन सब लोगों के बारे में जिन्होंने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ करके या उसके साथ साथ बॉलीवुड में कंटिन्यू किया, और उनमें से सबसे पहला नाम आता है, वो आता है डॉक्टर श्रीराम लागू का, जो कि पैदा हुए 16 नवंबर 1927 को महाराष्ट्र के सतारा में। उन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे से एमबीबीएस किया, फिर एमएस किया, एक सफल ईएनटी सर्जन बने, यानी नाक कान गला के सर्जन बने वो, और उसके बाद उन्होंने 42 साल की उम्र में अभिनय को अपनाया, अभिनय को मुख्य पेशा बनाया, 250 से अधिक फिल्में की जिनमें हिंदी और मराठी फिल्में थी। क्या कमाल की बात है, यानी बॉलीवुड भी भरा पड़ा है डॉक्टर्स और सीए से, तो आज का दिन सेलिब्रेट करना बनता है इस तरीके से भी। आइए आपके मैसेजेस भी पढ़ते हैं। मैसेज हमारे पास अगला पहुंचा है मसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब और पलक लुबना यश मंसूरी है उनके साथ। अगला से हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुर गंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परीन, अब्दुल्ला आजाद ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज आया है मोहम्मद अंसारी का, लिखते हैं हाय, बस इससे आगे कुछ नहीं लिखा, ऐसे कैसे बात बनेगी, कुछ आगे बढ़िए, हाय से आगे चलिए। संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं। चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी डेविस, विमला और सतीश अनेजा ने मैसेज किया है। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन सुहाना, अरजान अब्बान और पूरा परिवार इस वक्त हमें सुन रहा है। और कुछ धन्यवाद मैसेज आ रहे हैं, धन्यवाद आपने हमारा मैसेज शामिल किया, इसके लिए धन्यवाद मत किया कीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप कार्यक्रम सुनिए और मजा लीजिए, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप सुन रहे हैं तभी मैं बोल पा रहा हूं। लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिलू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और उनका परिवार जो है इस वक्त हमारे साथ है। चरखी दादरी से नम्रता, खुशबू, खुशदीप और परिवार के अन्य सदस्यगण हमें इस वक्त सुन रहे हैं। वार्ड नंबर 1 पोफारी जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने, मेरे यानी आनंद के साथ आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। आज है डॉक्टर्स डे और आज है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और हम ढूंढ ढूंढ कर खोज खोज कर ला रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने प्रोफेशन यानी मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टरी के बाद या उसके साथ बॉलीवुड में कंटिन्यू किया, या तो फिर जो सीए बनने के बाद भी बॉलीवुड में आए। और इसी फहरिस्त में जो अगला नाम है वो है डॉक्टर मोहन आगाशे का। जी हाँ, ये प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता हैं, शिक्षाविद हैं और मनोचिकित्सक भी हैं। इनका जन्म हुआ भोर महाराष्ट्र में 1947 में। पुणे के बीजे मेडिकल कॉलेज से ही इन्होंने मनोचिकित्सा में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया और बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्में जो हैं हमने बहुत सारी देखी हैं, जिसमें सामना है 1974 में आई, आक्रोश 1980 में, मशाल 84 में, रिहाई 1988 में,

गंगा जल में उन्होंने काम किया 2003 में, मिसिसिपी मसाला 1991 में आई फिल्म, ये सब वो फिल्में जो हमने देखी हैं और जिसमें उन्होंने काम किया है, जो कि पहले एक मनोचिकित्सक थे और बाद में उन्होंने बॉलीवुड में पदार्पण किया। आप भी बताइए यदि आपको ऐसे कोई शख्स मालूम है जो पहले डॉक्टर थे या चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बाद में बॉलीवुड में आए। आपके मैसेजेस का इंतजार है। लीजिए, बहुत सारे मैसेज तो पहुंच रहे हैं मुझ तक। हमारे पास जो अगला मैसेज आया है वो आया है मजनू काटीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहे मलिक। ये मैसेज मैं पहले पढ़ चुका हूँ मुझे ऐसा लगता है। दोबारा मत भेजा कीजिए, आपसे गुजारिश है, करबद्ध विनती है, आपका मैसेज पढ़ा जा चुका है तो दोबारा मत भेजिए। कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से, प्रवीण हागोणे, योगिता कुमारी, प्रियाली, पार्थ और पूरा परिवार जो है वो हमें सुन रहा है। विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मुणत, चेतन नाहटा, बोरखेड़ा पीतरामल, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मनीष पंवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान जो कि नेत्रहीन है हमें सुन रहे हैं, डांगरी से बाबू जयपाल, दिव्यांग है हमें सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा ने हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज जो है वो हम तक पहुंचा है दाऊद सराय सहारनपुर से, अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी हैं भेजने वाले। गांव करेली बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी और माहिनूर अंसारी ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है कुली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, लयानंद ओमकार और साईं गायकवाड़ हैं इस मैसेज को भेजने वाले। नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने मैसेज भेजा है। देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव, बेबी डॉली और पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी ने भी हमें मैसेज भेजा है बालोद छत्तीसगढ़ से। मैसेज आप भेजते रहिए। यदि आप भी जानते हैं ऐसे किसी अभिनेता को जो अभिनेता बनने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे या डॉक्टर थे तो हमें जरूर उनके बारे में लिख भेजिए। आपके मैसेजेस का मुझे इंतजार है। नंबर आप जानते ही हैं 9729253272 यानी 9729253272। आनंद को सुन रहे हैं आप आकाशवाणी हिसार से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने मेरे यानी आनंद के साथ। यदि आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उठाइए फोन, हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 97292-53-272 972-9253 272। खैर बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नाना चंद मल्होत्रा, शिवाजी करौनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका डुगू, भाविक सिक्का ने हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज हमारे पास आया है गंगोह सहारनपुर यूपी से, इलियास मंसूरी, हसन मंसूरी और उनका पूरा परिवार है उनके साथ। मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, अनम, यशफ, सुहेल हसन और रसीद वारसी हैं मैसेज करने वाले। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने हमें मैसेज किया है, लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत गाने आप बजा रहे हैं, सब आप ही की पसंद के हैं, मैं तो सिर्फ आपकी पसंद को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन और मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है सब्जी मंडी बुलडाणा से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और

मुदस्सिर हुसैन हैं इस मैसेज को भेजने वाले। एक और मैसेज लेते हैं जो कि आया तेलंगाना निज़ामाबाद से। शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम और दानिश आसिफ शेख हैं भेजने वाले। मैसेज हमारे पास पहुंचा है चौटाला हरियाणा से दारा पंडे, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और राज कुमार भादू ने भेजा है। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है गंज ढुंडवारा से मोहम्मद करीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान है भेजने वाले। उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री जिला खरगोन मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने हमें मैसेज भेजा है। पांडाकवाड़ा जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, भराशा से सूरज लौंढे, प्राची लौंढे और एकलव्य ने हमें मैसेज भेजा है। एक और मैसेज पढ़ेंगे अगले गाने से पहले जो कि भेजा है पथरिया छत्तीसगढ़ से। अच्छा, इन्होंने लिखा है 36 यानी 36 और गढ़, ये मैंने पहली बार पढ़ा हुआ देखा है तो इसका जिक्र करना जरूरी है। 36 को ना न्यूमरल्स में लिखा है छत्तीसगढ़, पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। देखिए जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं क्रिएटिविटी, है ना, कहीं भी वो सृजन कर सकते हैं। जैसे ये कितना मतलब अलग तरीके से लिखा है उन्होंने छत्तीसगढ़, तो मुझे लगा इसका जिक्र करना जरूरी है। तो नरेन नेताम और कुसुम नेताम जी आपको बधाई कि आपके इस मैसेज ने रोक दिया मुझे, और अब हम आगे बढ़ेंगे इस गाने के बाद, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। मैं हूं आनंद। आपने टर्न किया है आकाशवाणी हिसार एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यदि आप भी बनना चाहते हैं हिस्सा इस कार्यक्रम का तो उठाइए फोन और हमें भेजिए अपना व्हाट्सएप मैसेज, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं। नंबर है हमारा 97292-53272। साथ ही आज है डॉक्टर्स डे और आज हम बात कर रहे हैं उन बॉलीवुड स्टार्स की जो इस प्रोफेशन में यानी बॉलीवुड में आने से पहले डॉक्टर्स हुआ करते, और उनमें जो अगला नाम है वो है डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर। एक जानी मानी भारतीय अभिनेत्री हैं, सुपर मॉडल भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। उन्होंने MBBS की पढ़ाई जो है वो साइकोलॉजी, बाद में उन्होंने साइकोलॉजी में भी महारत हासिल की, MBBS की पढ़ाई की उन्होंने। मिस वर्ल्ड रही, मिसेज वर्ल्ड रही और उसके बाद वो बॉलीवुड में आई। उन्होंने पहेली, बाज, बर्ड इन डेंजर, दे दनादन जैसी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। बिग बॉस 3 का वो हिस्सा रही हैं और बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर हैं, बाद में एक बॉलीवुड स्टार हैं। कितनी कमाल की बात है ना, कितना कुछ करते हैं लोग एक ही जिंदगी में। पहले +2 किया, फिर इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ी और फिर अचानक सोचा कि क्यों ना बॉलीवुड स्टार बना जाए। वाकई में गजब के लोग हैं। आप भी बताइए कि आपको मालूम है किसी ऐसे बॉलीवुड अभिनेता के बारे में, अभिनेत्री के बारे में जो बॉलीवुड में आने से पहले या एक्टर एक्ट्रेस बनने से पहले डॉक्टर हुआ करते या CA हुआ करते। तो वेलकम है आपके मैसेजेस का। बाकी मैसेजेस आपके बहुत सारे आ रहे हैं। मेरे पास अगला मैसेज आया है प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से। डॉक्टर सुरेश, अनीता, आरती, प्रसाद, सोनल, बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता ने मैसेज भेजा है हमें। बावड़ी गेट भिवानी से रोशन लाल, उमेश, योगेश, कुलदीप, उपेंद्र, युवान, प्रेम खटक, धर्मवीर खटक और आप सभी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं। मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, साजरानी बिट्टू भैया और हिना कौसर ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है जो कि भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय, रतनमाला और विद्या कुमारी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने हमें मैसेज भेजा है। गांव एवं डाकघर निम्नाबाद जिला जींद से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर ने हमें मैसेज भेजा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। आनंद जी हमें भी शामिल कर लीजिए। लीजिए, आपको भी शामिल कर लिया। और अगला मैसेज है कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। आइए सुनते हैं अगला गीत और फिर ढूंढ कर लाएंगे कौन छुपा बैठा है जो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करता और आजकल बॉलीवुड

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। मैं हूं आनंद, और यदि आप भी जुड़ना चाहें इस कार्यक्रम में तो उठाइए फोन, हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है 97292-5272। साथ ही आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स डे की और सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे की, जो कि आज सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और आज हम ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करते या तो फिर डॉक्टर हुआ करते बॉलीवुड में आने से पहले। और अभी जो मेरे सामने नाम आया है वो बहुत ही गजब पर्सनालिटी हैं। आपने उनकी फिल्म देखी है मिस्टर इंडिया मासूम, और इन्होंने सीए की पढ़ाई पढ़ी। मात्र 22 साल में इन्होंने सीए जो है वो क्लियर कर लिया था लंदन में, और उसके बाद ये इंडिया आ गए। नाम है शेखर कपूर। जन्म हुआ 6 दिसंबर 1945 में। बेहतरीन फिल्में दी इन्होंने, साथ ही इन्होंने निर्देशक के तौर पर बैंडिट क्वीन, आपने नाम सुना होगा, 1994 में आई थी, उसकी डायरेक्शन इन्होंने की थी। साथ ही हॉलीवुड के अंदर इन्होंने एलिजाबेथ 1998 के अंदर, 1998 में एलिजाबेथ द गोल्डन एज 2007 जैसी भव्य और ऑस्कर विजेता फिल्मों का निर्देशन किया। लेकिन असल में प्रोफेशनली ही इज सीए, कमाल की बात है। खैर, हाँ, आपके मैसेजेस भी बहुत सारे आ रहे हैं हम तक। तो मैसेज अगला हमारे पास आया है जेवरा हिसार से। वीरेंद्र भयान, सुरेंद्र भयान, शमशेर और मनोज भयान हैं भेजने वाले। जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ रतलाम एमपी से जुड़े हैं हमारे साथ। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है जो कि भेजा है राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, विवेक, प्रीति चौधरीवास से जुड़े हैं हमारे साथ ये श्रोता। राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी ने हमें मैसेज भेजा है गांव फांसी हिसार से, चकला बाजार समाना शहर पंजाब से, पप्पू, संगीता, सुनीता, आरजू, हसमुख लाल, बुलबुल, संजीव और पूरा परिवार जो है वो इस वक्त हमें सुन रहा है। कुछ और मैसेजेस जो हैं वो भी हम तक पहुंच रहे हैं। कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम और कमल कुमार ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है बरकरम वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, यश, प्रियान, शिवम, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। अगला मैसेज जो है वो है हीरा वाली पंजाब से, सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, हिंदू पार्वती, हिमांशु गुदारा और उनका पूरा परिवार। तो आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। नंबर है हमारा 9729253272। विजय राज, नाम आपने जरूर सुना होगा, थोड़ा याद दिलवाता हूँ। विजय राज फिल्म रन में कौवा बिरयानी इनका फेमस कैरेक्टर था। मानसून वैली में दुबे जी के कैरेक्टर के लिए इन्हें बहुत फेम मिला था। वैसे अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और गंभीर किरदारों के लिए जाने जाते हैं। गंगूबाई, काठियावाड़ी, वेलकम, धमाल, ड्रीम गर्ल, क्या दिल्ली क्या लाहौर जैसी फिल्मों में काम किया है और फिल्म डिलीवरी के लिए इन्हें बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला था, इनफैक्ट नामांकन मिला था। कौन है ये? असल में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था एज सीए। जी हाँ, सीए परस्यू कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ये आगे बॉलीवुड में। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो बॉलीवुड में आने से पहले या तो सीए या तो फिर डॉक्टर हुआ करते। तो ये इनफैक्ट मुझे भी आज ही मालूम पड़ा, जब मैं सुबह इस शो की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा कि देखिए आज कौन सा खास दिन है, आज है डॉक्टर्स डे, आज है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो मुझे

आखिर ढूंढना चाहिए, ऐसे कौन कौन से अभिनेता हैं जो बॉलीवुड में हैं और इससे पहले डॉक्टर्स थे या चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और वो देखिए वो भी मिल ही गए हमें। खैर, अगला जो हमारे पास मैसेज पहुंचा है वो पहुंचा है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती, राघव हरमन और अन्य सदस्यगण। गांव फांसी जिला हिसार से आरसी मेहता, सिद्धांत चतुर्वेदी ने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से, सोपान तायरे, वसंतराव भोजने और पीएस नहावकर। मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी जुड़े हैं हमारे साथ। चरखी दादरी चिड़िया दुधवा से सोनू संगेलिया, मंजीत, तनीस और उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। यशमित, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। आइए इन सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने, फिल्मी तराने आकाशवाणी हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर मेरे यानी आनंद के साथ। कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम? आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। हमारा नंबर वही है 9729253।

सादो। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार होंगे, अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से

भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्ट

0: मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The government today approved two major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions,
2: FM 102.3 MHz पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:06 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में कल सुबह 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

समाचार केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:06 और 10 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा में कल सुबह 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।